दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

وضرب لنا

talking unity here. I'm not saying you're better than the rest.

काम कर गईं दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

0: घाट बन्नो एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: This is FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ।
3: सुनते रहिए FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सदर ने कहा है कि हुकूमत लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म आज वाशिंगटन में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल के लिए अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। आज डबलिन में ख़वातीन की सह मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या

0: पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: दिस इज एफएम
2: 101। सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
2: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: सुनते रहिए FM 101।
4: मेरा नाम डॉक्टर वसीम जमालवी है। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स सिविल हॉस्पिटल कराची, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। हर साल वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन आलमी सतह पर वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाती है। इस डे का मनाने का मकसद होता है कि हाजमे से मुतालिक बीमारियों, उनकी मसाइल के रोकथाम, फैलाओ, तशखीस और उनके इलाज के बारे में अवामुन्नास और हेल्थ केयर में आगाही पैदा की जाए। क्रॉनिक डायरिया एक ऐसी कैफियत है जिसे अक्सर लोग बता नहीं पाते हैं। वो हर दफ़ा जब भी उनको असहाल की बीमारी लाहक होती है, वो कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो जिससे कि बीमारी वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी शदीद अलामत ज़ाहिर होने लगने पर यह बीमारी बढ़ भी जाती है। इस दिन के मनाने का मकसद है कि इसके बारे में आगाही बढ़ाई जाए और बर वक्त डॉक्टर से इलाज और मशवरा करके इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए।
5: ये मालूमात केट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
3: दिस इज FM 101।
6: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव FM 101।
7: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: दिस इज FM 101।
0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
9: There's music and then there's magic. One above FM 101.

There's music, and then there's magic. One above FM.

0: This is FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: शुक्रिया, आपने
1: FM 101 किया. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
0: दिस इज FM 101.
3: सुनते रहिए FM 101. 101.

0: sono io e te, beh.
1: This is FM 101.

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशनों में फ़ाल शिरकत के जरिए आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। सदर ने कहा है कि हुकूमत लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म आज वाशिंगटन में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल के लिए अमरीका के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। और आज डबलिन में ख़वातीन के सैमुल की T20 क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Radio. 13 June, PC Hotel Lahore, aaiye aur dein Al-Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: This is FM 101.
4: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution.
5: हमसे है रोशन ये जहां,
6: हमसे है

0: डॉक्टर अदनान कादिर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर। क्रॉनिक डायरिया जो पेजिस की बीमारी है, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा मोशन होते हैं तो उसको प्रॉपर इसका वर्कअप और प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए, और जो सलाद और फल इस तरह की चीज़ें हैं उनको भी उस पानी से धोना है जो कि हम पीते हैं, मतलब क्वालिटी वाटर से जो कि कच्ची सलाद और फल खाया जाता है। तो ये इस पे अमल करना और इसको समझना जी है बहुत ज़रूरी है।
1: ये मालूमात कैट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
2: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.
4: सुनते रहिए FM 101 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: दिस इज FM 101।
9: मेरा नाम डॉक्टर आरित प्रकाश है, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। पेचीदा दस्तों की बीमारी बच्चों को होती है, यानी कि अगर किसी बच्चे को 2 हफ्ते से ज़्यादा दस्त चलते हैं तो उसको क्रॉनिक डायरिया कहा जाता है। तो क्रॉनिक डायरिया भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप जल्दी से अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवा के सही तख्शीश बनाई जाए और मालूम किया जाए कि आया उसको गंदम की एलर्जी है, आंतों का इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कि आम दवाइयों से नहीं जा रहा, तो उनका बरवक्त इलाज किया जा सके कि बच्चे की ग्रोथ और नशोनुमा पे कोई असर ना आए।
10: ये मालूमात केट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
11: सुनते रहिए FM 101।
12: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
13: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें
2: सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंभ

0: टाइफाइड और रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों के मेदे और आंत और जिगर की बीमारियों, बहुत सारी बीमारियों से बचाव का बायस बनती हैं। वालदैन याद रखें कि बार बार तशखीस से मेदे और जिगर की बहुत सी मसाइल से बचा जा सकता है।
1: ये मालूमात केट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101 101.

काम कर गईं दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

0: This is FM 101.
1: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. क्यों जी ये कोई शक है क्या?
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. क्यों जी ये कोई शक है क्या?

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: मेरा नाम डॉक्टर कमल बुटानी है। मैं बतौर माहिर इमराज मैदा जिगर और आंत कराची में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी सर्विसेज सरंजाम दे रहा हूँ। आज का हमारा मौजू है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, जो कि हर साल 29 मई को वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मनाया जाता है, जिसकी आम पब्लिक को ये आगाही दी जाती है कि मैदे और आंत की बीमारियाँ बाज़ औक़ात खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस साल की जो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की थीम है वो है क्रॉनिक डायरिया डोंट फ्लश द साइंस अवे, यानी कि ऐसे मोशन जिनका दौरानिया 4 हफ्ते से ज़्यादा है वो अगर किसी पेशेंट को है तो वो फौरन किसी मुस्तनद गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से अपना मुआयना करवाए और इसके बेहतर इलाज की तरफ रजू करे, क्योंकि सेहतमंद रहेगा पाकिस्तान तभी तो कामयाब होगा पाकिस्तान।
2: ये मालूमात केट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
8: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
9: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
10: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

0: This is FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबाबंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने आलमी अम के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। नायब वजीर आजम अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में हैं। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का बजट इजलास आइंदा माह की 5 तारीख को तलब किया है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने ईद उल अजहा के मौके पर सूबे भर में सफाई सुथराई का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने राजौरी में मुसलसल 7वें रोज भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी रखीं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: तो मेरा नाम डॉक्टर दुर्गा शैवार है। जैसा कि आपको मालूम है कि सीने की जलन, तेजाबियत और बार बार डकारों का आना खाने की नाली की सोजिश और तकलीफ का बाइस होता है। अगर इन अलामत को बर वक्त डॉक्टर को ना दिखा जाए तो ये मैदे की बड़ी बीमारी का बाइस बन सकता है। इस वर्ल्ड हेल्थ डाइजेस्टिस डे पर हम सबको अपनी गट का ख्याल रखना चाहिए, बैलेंस हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। अगर हम हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी गट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है।
3: ये मालूमात केट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
4: This is FM 101.

0: ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: मेरा नाम डॉक्टर नासिर लक है और मैं मेदे जिगर के हवाले से अपनी खिदमात SIUT में पेश करता हूँ। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सीने में जलन महसूस होना, ऐसा मरीज जो है रात भर तकलीफ में रहता है, सो नहीं सकता और अजीब सी फीलिंग होती है, और ये सारे का सारा तेजाब जब मुँह में आ रहा होता है तो मुँह भी कड़वा होता है, कुछ लोगों को खांसी हो जाती है, और ये सिम्टम बहुत हद तक दिल की बीमारी के साथ भी बाज़ बार मिक्सअप करते हैं। तो हम अपने तमाम मरीजों से ये गुजारिश करते हैं कि भाई मोटापा हमारे यहाँ 100 में से 40 लोगों को है, इसको रूटीन ना समझें कि जी बदहजमी हो गई थी, हमने मुर्गन गजाएँ खा ली थी, रात को खा के मैं जल्दी सो गया था। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनके साथ साथ मौलिज को दिखाना ताकि आइंदा के लिए कोई और ख़तरा जो है उसे टाला जा सके।
2: ये मालूमात कैट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
3: सुनते रहिए FM 101।
4: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
5: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
6: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
7: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
8: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
9: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
10: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101

0: सुनते रहिए FM 101।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्प लाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी

0: सुनते रहिए FM 101।
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती है एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्प लाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
10: I love FM 101.
11: मेरा नाम डॉक्टर तैयब सईद अख्तर है और मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में बतौर माहिर अमराज मेहदा और जिगर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। वो लोग जिनको क्रॉनिक जुलाब की कैफियत होती है और जिसकी वजह से वो लोग अपने मौलिज से भी सही तरह से रब्ता में नहीं रहते, ना अपना इलाज सही तरह कराते हैं, क्योंकि उनको एक शर्म सी महसूस होती है और वो अपनी अलामत लोगों से शेयर नहीं कर पाते सही तरह। तो जब तक ऐसे पेशेंट अपना प्रॉपर मॉलेज से मुआयना और टेस्ट नहीं कराएंगे, उनके प्रॉपर तशखीस नहीं हो सकेगी और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो सकेगा। तो आज के दिन के हवाले से हम ये मैसेज सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी मेदा जिगर से रिलेटेड कोई क्रॉनिक बीमारी है तो अपने मॉलेज से जरूर रब्ता करें।
12: ये मालूमात कैट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
9: Smile and dial. 111-111-FM.
13: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
9: आपने FM 101 ट्यून किया।
13: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
9: Tune in to One Above, FM 101.
14: Keep smiling and drive carefully, okay?
15: Okay.
10: I love FM 101.

अच्छा, इस ईद पे ना कोशिश किया करें, क्योंकि ईद कुर्बान है और गोश्त बहुत ज़्यादा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है और हम कर लेते हैं। कुछ लोग बेजा, मतलब बस एवी रख लो तो एवी रख लो, किसी किसी को देना नहीं है, बस अपनी फ्रिज में रख लेना। तो ये काम आपने नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बांट दीजिए, और जितना आपको 4-5 दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन तक आप खा सकते हैं, वो अपने लिए रख लीजिएगा फ्रिज में। फ्रिज बिल्कुल बाहर ना दीजिएगा। कुछ लोग तो नया फ्रीजर खरीदते हैं ईद पे। कौन लोग हो तुसी? तो बड़े एहतियात से खाइएगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और गोश्त भी गर्म होता है। आप खाएंगे, मैदा अपसेट होगा, फिर सो मसाइल। और फिर हम खाते भी उस तरह से नहीं है ना जिस तरह हम रूटीन में खाते हैं ना। रूटीन में को सालन बना हुआ है तो हम मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कोरमा बना हुआ है तो हम 2 से 3 बोटियाँ खा लेंगे, लेकिन वो हम ईद पे ये काम नहीं करते। 2-3 बोटियाँ इस जस्ट चखना कि यार की पका रहे हो अज जी, भुनिया हुआ गोश्त बन रहा है, अब मैनू चखाना ज़रा। वो 2-4 बोटियाँ तो चखने में ही चली जाती हैं ईद पे। तो ये काम आप कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें, बहुत ज़्यादा ना करें। राइट हुए जी, कोई गाना चलाते हैं। और यस, दिस ये गाना मैं चलाना चाह रहा था और ये गाना मुझे मिल गया है। चलें जी, गाना चलाते हैं, गाने को एंजॉय करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, 101 के साथ साथ रहना है। और कोई भी गाना सुनना चाहते हैं मुझे ज़रूर फरमाइश कीजिएगा। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101L लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपना पैगाम लिखिएगा, और हमें अपना मैसेज, अपना गाना, कुछ भी आप सुनना चाहते हैं, कुछ भी हमें कहना चाहते हैं। और हमें ये भी आप बता सकते हैं कि आपकी ये ईद कैसी गुजरी। अपने मैसेज को भेजिएगा 4471 पर, और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।

ले जी, एक गाना चला रहे हैं आपके लिए और गाना चल जाए सही बस। ये भी तो बड़ा मसला है ना। कलब साहब ज़रा आइएगा, क्योंकि हमारे पास गाना जो है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हो गया है, लेकिन हम भी उसको मना के ही छोड़ेंगे। यस, चले इंजॉय कीजिएगा खूबसूरत ट्रैक। असरार की आवाज़ है, FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, मैं और आप हैं, मुझे आरजे अली रजा कहते हैं। अगर आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं लाहौर की सड़कों पे खूबसूरती ड्राइव का मज़ा ले रहे हैं, तो सुनते रहिए FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये गाना आपकी खूबसूरत समातों की नज़र, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत कीमती है।

शक्कर मंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। पिया जब ईद पे आता है ना मिलने, फिर शक्कर मंडनी चाहिए बंदे नू।

क्या बात है जी, क्या बात है, असरार की तो क्या ही बात है। मैं कहता हूँ असरार वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर, और शक्र मंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शो में किसी भी टाइम पे लगा लें, कभी भी लगा लें, ये गाना हमेशा फिट होता है। ईद पर मैं खाने पीने की बातें कर रहा था, तो खाने पीने से याद आया कि ईद पर जब हम खा पी लेते हैं, बहुत ज्यादा खा पी लेते हैं ना, तो ईद के बाद फिर वो वजन करने वाली जो मशीन है ना, उसके ऊपर किसी बंदे को आप खड़ा कर देना, पहले तो वो खड़े नहीं होगा, और फिर अगर आप कर दें तो लाजमन को 3-4-5 किलो उसका वजन बढ़ जाएगा। अभी जब मैंने अपने ट्रेनर के पास जाना है ना आफ्टर ईद छुट्टियों के बाद, तो फिर मेरे जो ट्रेनर साहब है ना, उन्होंने भी मुझे यही काम करवाना है। मैं कहना बेटा सबसे पहले तो वेट मशीन पे आओ ना जरा, मैं देखता हूँ कि क्या था ईद के, ईद से पहले क्या सीन था और अब क्या सीन है। इसलिए मैं ना बड़ा डर डर के खा रहा हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा सा खाता हूँ, मैं दो प्लेटें सिर्फ मैंने आज खाई हैं, उसकी पुलाव की खाई हैं, और साथ मैंने दो कबाब खाए हैं, बस यार दो दो काफ़ी होता है, दो से ज़्यादा नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी। सही कह रहा हूँ ना। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगियों में ऐसे भी होते हैं जिनसे हम सिर्फ ईद वाले दिन मिल रहे होते हैं, यानी कि साल बाद ईद आनी है, छोटी ईद आनी है, फिर बड़ी ईद आनी है, हम ईद के ईद उनको मिलते हैं, वो भी हमारे लिए ईद का चांद होते हैं, हम भी उनके लिए ईद का चांद होते हैं, या वो सारा साल हमें मिलना नहीं चाहते, या हम उन्हें सारा साल मिलना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ तो होता है दरमियान, ऐसे नहीं होता इस तरह, मिलना चाहिए पूरा साल भी मिलना चाहिए, जिन्हें आप ईद पे मिल लेते हैं यार उनसे पूरा साल भी मिल लिया करें, कभी साल में एक आध दिन निकाल लिया करें, कुछ वक्त निकाल लिया करें उनके लिए भी। मिलना चाहिए पूरा साल भी मिलना चाहिए, जिन्हें आप ईद पे मिल लेते हैं यार उनसे पूरा साल भी मिल लिया करें, कभी साल में एक आध दिन निकाल लिया।

होते हैं वो दोस्त जवानी के दोस्त होते हैं, बुढ़ापे के दोस्त कम ही इकट्ठे होते हैं या जब शादियां हो जाती हैं फिर बहुत कम दोस्त इकट्ठे होते हैं। जो वो बचपन में आप इकट्ठे होते हैं ना, बचपन में इकट्ठे होके आप हल्ला गुल्ला करते हैं, मस्ती करते हैं, बारबेक्यू करते हैं और सारी रात ऐसे मतलब किसी भी दोस्त की छत पे बैठे रहना, बातें करते रहना, फ्यूचर की प्लानिंग करते रहना, यार ये करेंगे ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ें सोचते रहना। जब हम बैठे होते हैं ना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस वक्त हम अपने फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सो दोस्तों को भी मिलते रहना चाहिए, दोस्तों का भी हाल अहवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्त हमारा सरमाया होते हैं, दोस्त हमारी ज़िंदगी होते हैं, दोस्त वो होते हैं जिनसे हम बगैर कुछ भी सोचे बगैर कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है यार मेरा दोस्त है गुस्सा नहीं करेगा, नाराज़ नहीं होगा, ये नाराज़ नहीं होगा, मुझे इसको मनाना नहीं पड़ेगा वेल मनाने से याद आया कि ईद कुर्बान पर या ईद पर या किसी भी दिन, जैसे मैं अभी ईद कुर्बान की बात कर रहा हूँ, तो ईद कुर्बान पर कुर्बानी से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का सवाब है तो किसी रूठे हुए रिश्तेदार को मनाने का सवाब है। तो अगर कोई रिश्तेदार आपसे अभी भी रूठा है, अभी भी आपके पास वक्त है, जाएं ज़रूर जाएं और छोड़ें ये अना, छोड़ें ये बातें, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, कोई छोटी सी बात होती है, कोई इतनी बड़ी बात होती भी नहीं है। अच्छा जब पता चलता है ना कि ये बात थी, फिर बंदा कहता है ये बात थी यार, इस बात पे आप लोग इतनी देर नाराज रहे। सो अगर कोई ऐसी बात है, कोई आपका रिश्तेदार, आपको कोई बहन भाई, आपको कोई ताया चाचा मामू, कोई भी आपसे नाराज है या आप किसी से नाराज हैं, तो आप मान जाएं, कोई आपसे नाराज है तो आप जाके मना लें। ये रूठना मनाना भी जिंदगी का हुस्न है, रूट जाना चाहिए लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए। पर मैं तो किसी से कोई घंटा से ज़्यादा रूट नहीं सकता, तो मेरे से कोई 5 मिनट रूट जाए तो मैं उससे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि 5 मिनट से पहले ही इसको मना लूँ। मैं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझसे नाराज़ रहे। सो अगर आप मेरे सुनने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी बातों को भी सुना करें गौर से और अमल भी कर लिया करें कुछ ना कुछ, अगर आप करना चाहें, मैं कोई फोर्सफुली नहीं आपको कह रहा,

अच्छा जी, ये गाना है मेरे पास। हाँ, ये वाला गाना था उमेर जसवाल का और कुरातुलैन बलोच का। क्यूबी के गाने हम अक्सर प्ले करते रहते हैं, लेकिन उमेर का गाना हम इतना नहीं प्ले करते, लेकिन ये गाना बड़ा मज़े का है। तो इस मज़े के गाने को आपने मज़े मज़े लेके एंजॉय करना है, मैं भी आपके साथ साथ एंजॉय करूंगा, और आपने कहीं नहीं जाना, 101 के साथ साथ रहना है। ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आवाज़ है आरजे अली रज़ा की, आपकी अपनी जानी पहचानी आवाज़। शाम का वक्त है, आपको एक दफा फिर हम ईद उल अज़हा मुबारक कहते हैं। और फिर कॉल कर सकते हैं 04221000101। एक आध दो फिर कॉल लेते हैं, उसके बाद हम ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं।

0: हमें आज मसूद आनंद सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच मसूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपका मैसेज आया और दिल बाग बाग हो गया, मेरे दिल में एक नया बाग उमड़ आया है। गुड गोइंग कह रहे हैं मसूद अहमद, थैंक यू सो मच मसूद भाई। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपने खर्चे पे प्लीज। मसूद भाई ये गाना आपके नाम, इंजॉय करें।
1: जाने क्यों
0: लग

ओके लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। ये एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर है और आवाज़ है आपकी अपनी जानी पहचानी और आपके अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने शहजादे की। मैंने कहा यार आज कोई तारीफें नहीं कर रहा, खुद ही कर लेता हूँ। वेल मुझे आज अली रजा कहते हैं, 5:35 हो गए, आपका मेरा साथ रहने वाला है। ठीक ठीक ठीक ठीक 7 तक हम मस्ती करते हैं जुमे को आके और हमारी मस्ती जारी सारी है। और आपकी ईद कैसी गुजरी और आपने ईद पे क्या क्या किया ये हमें बताएं, कितना गोश्त खा लिया, कितना बांट दिया, कितना रख लिया, इस हवाले से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इस ईद पे आपने क्या स्पेशल किया, कोई एक ऐसा स्पेशल काम जो आपने पिछली किसी ईद पे नहीं किया और ये आपने फर्स्ट टाइम किया और आपने कहा यार वाह ये मैं मुझे पहले आइडिया क्यों नहीं आया। कोई ऐसी डिश बनाई हो, कोई ऐसा खाना बनाया हो, कोई ऐसी रेसिपी बना दी हो, कुछ ऐसा मसाला लगा दिया हो। कौन सा मसाला वाला? खाने को मसाला लगाने का बात कर रहा हूँ, किसी को मसाला लगाने का नहीं। या आपको फ्रिज में गोश्त रखने का तरीका आ गया हो, कोई नया तरीका ईजाद हो गया हो कि मैंने गोश्त इस तरह से रखना है। वो आजकल उसके जो शॉपर हैं वो भी बड़े एक स्टाइलिश किस्म के आए हुए हैं, उस पर लिखा होता है जी ये बकरे का है, ये बैल का है, ये किस दुम्बे का है, ये किसका कौन सा गोश्त है। तो उस बॉक्स पे आप टिक करेंगे और उसको फ्रीज कर देंगे, फिर जब आपने वो पकाना होगा आप देखेंगे वो टिक देखेंगे आप कहाँ पर किया हुआ है, फिर वो गोश्त आप निकाल के बना लेंगे। ये भी बड़ा एक सीन आ गया यार, हम तो पर्चियाँ डाल के रखा करते थे या वो शॉपर पे लिखा करते थे। और अच्छा वो शॉपिंग बैग पे नाम भी आ गया, अगर आपने किसी पुप्पो को भिजवाना है, अपनी पुप्पो को या अपने ताया को भिजवाना है या चाचू को भिजवाना है, मामू को भिजवाना है, उस पर आप लिख दें मामू फलाना, चाचू फलाना। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सीन आ गया कि आप लिख के चाहे उनका फ्रीज कर दें फिर देखें किसका नाम लिखा हुआ है और भेज दें। हम पर्चियाँ डाल के बीच में रखते थे और वो पर्ची साहिबा भी कभी कभी ख़राब हो जाती थी। ऐसे वो होता था। जदीद दौर आ गया जी, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई। 04221000101 हमसे रब्ते का नंबर है, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, उन मैसेजेस को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं किस किस ने हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर लिया है, फेसबुक पे कौन कौन हमारे साथ साथ मौजूद है और कौन हमें सुन रहा है, कौन हमें ईद के हवाले से बातें कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन ड्राइव करते हुए हमें सुन रहा है, कौन खामोशी से हमें सुन रहा है, ये सब जानते हैं और देखते हैं किस किस ने मैसेज भेजा है। वेल हमें मियाँ मोहम्मद हुसैन सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। हमें सुन रहे हैं जी, यस यस यस यस, ये नीचे करें जी, नीचे करें। हमें अमरजा चौधरी सुन रहे हैं, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच, ईद उल अज़हा का तीसरा दिन मुबारक, अमरजा चौधरी ऑफ ओकाड़ा, थैंक यू सो मच, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं ओकाड़ा से। और हमें सुन रहे हैं रमज़ान गुजर, अदाब अर्ज करते हैं अली रजा साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, हम भी आपको आदाब कहते हैं, आदाब। नज़ीर खुसो सुन रहे हैं, प्रोग्राम बेहतरीन है, सोहबतपुर बलोचिस्तान से मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक कह रहे हैं जी रमज़ान गुजर, थैंक यू सो मच रमज़ान, आपके बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मला खेल सुन रहे हैं, हमदुल्ला मला खेल कहते हैं जी जुमा मुबारक, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। गुलियासीन नाजा, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी ईद उल अज़हा ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच जी गुलियासीन, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा हमें मैसेज आया है मुनज़्ज़ा का, भाई मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, थैंक यू सो मच, आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। राजा जुल्कनैन कियानी है, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हमें दिलीप कुमार सुन रहे हैं जी, गोठ हा थरपारकर, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, कहते हैं जी शो लाजवाब है, आपका भी कोई जवाब नहीं जनाब, आपका भी कोई जवाब नहीं। और हमें मैसेज आया है जी एम इजाज अली का, थैंक यू सो मच, इरफानुल्ला है, थैंक यू सो मच, हमें सुन रहे हैं आरजे अरहम भट्ट, ईद वाले दिन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, हम दोनों ने इकट्ठे प्रोग्राम किया 5-7 तक और 2 बड़े खूब मस्ती हल्ला गुल्ला और इन्जॉय किया, थैंक यू सो मच अरहम, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर खोसो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हमजा सुन रहे हैं, आपका भी शुक्रिया।

हमें साजी सुन रहे हैं गुजरांवाला से, भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच जी सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलें जी गाना चलाते हैं, और गाने भी चलाने हैं यार, साथ साथ इंजॉय भी तो करना है हमने। हम गाने चलाएंगे तो ही इंजॉय कर पाएंगे। और एक गाना बड़ा खूबसूरत सा है अली ज़फ़र की आवाज़ में, मैं कभी कभी प्ले कर देता हूँ जब मैं अच्छे मूड में हूँ, तो आज मेरा मूड अच्छा है। ये गाना सुनिएगा, इस गाने को इंजॉय कीजिएगा, अली ज़फ़र की खूबसूरत सी आवाज़ है। ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, मुझे आरजे अली रसा कहते हैं, मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा 7 बजे तक। अगर आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो इस पहली दफ़ा सुनने को आखिरी दफ़ा नहीं बनाना प्लीज़, मेरे साथ मौजूद रहें 7 बजे तक, और हर जुमे को वापस आएं 5 बजे और फिर मौजूद रहें 7 बजे तक। 0422111

0: One Above, FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज़ है आरजे अली रजा की। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप फन 101 विद आरजे अली रजा हर जुमे की शाम 5 से 7 बजे तक। वेल, ईद के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। आज मैं जब घर से बाहर निकला और स्टूडियो की तरफ आ रहा था, मैं रास्ते में मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ा कि वो हमें बेवफा कहते हैं तो कहते रहें, वो हमें बेवफा कहते हैं तो कहते रहें, अम्मी कहती हैं जो कहता है वो खुद होता है। अच्छा, ये ना बड़े मज़े के फ्रेजेस, बड़े मज़े के शेर, बड़े मज़े की बातें और बड़े मज़े के अकवाल लिखे होते हैं रिक्शों के पीछे, बसेस के पीछे और ट्रक, स्पेशली जो ट्रक आर्ट है वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उनके पीछे बड़े ज़बरदस्त से ना ये फिक्रे लिखे होते हैं। अगर आपने कभी कोई ऐसा फिक्रा पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें कॉल भी आके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रक्स के पीछे, रिक्शों के पीछे आपने लिखे हुए सबसे मज़ेदार, सबसे खूबसूरत जुमले या कोई शेर कौन सा आपने पढ़ा, देखा, सुना। भले एक जगह पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि जिंदगी अपनी थी बर्बाद लोगों ने कर दी। हाय हाय हाय हाय हाय, जब इस तरह के लिखे हो ना तो फिर दिल कहता है कि अंदर जो बंदा ड्राइव कर रहा है इसको भी देखा जाए। एक बंदे ने लिखा हुआ था कि टूटे हुए पत्तों की तरह बिखरे हैं हम तो, टूटे हुए पत्तों की तरह बिखरे हैं हम तो, किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। हाय हाय हाय हाय। ऑन एयर कॉल्स लेंगे 6 बजे की न्यूज ब्रेक के बाद, तो आप कॉल करना शुरू कर दीजिएगा 04221100101। अगर आप हमें खामोशी से सुन रहे हैं आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस लगेगा, सिर्फ 5 से 7 रुपए का या हद 10 रुपए का लगेगा हमसे बात करने के लिए, तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है वैसे। मैसेजेस आपके आ रहे हैं और मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस का, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमें साजिद सुन रहे हैं वंस अगेन, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमें शाजिया सुन रही हैं लाहौर से, थैंक यू सो मच। इमरान रफीक सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमें आयशा मुगल सुन रही हैं, आपका भी शुक्रिया। और हमें रमज़ान गुजर सुन रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। गुल यासीन नाज सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। हमें फातिमा सुन रही हैं, नाइस प्रोग्राम, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अमरजा सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच अमरजा, कहते हैं जी अमेजिंग, वाह कमाल शो है, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं जी वीआईपी शो है, थैंक यू सो मच जी, आप खुद बड़े वीआईपी हैं जनाब, उकाड़ा में आप बैठे हुए हैं, उकाड़ा की सरजमी में। उकाड़ा मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत हसीन लगता है, बहुत दिल उकाड़ा की जानिब अक्सर जाता है कि यार उकाड़ा जाऊँ दोबारा। ایک دفعہ خوب گرمی میں میں اکاڑا پھرا اور کافی اکاڑا کی میں نے زمین دیکھی، کافی جگہ پھرا، مزہ آیا تھا اکاڑا میں یار۔ رمضان گجر ہیں، آداب عرض کر رہے ہیں، ون سکین تھینک یو سو مچ رمضان گجر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہم بھی آپ کو آداب کہتے ہیں جناب۔ ہمیں جمیل سن رہے ہیں لاہور سے، بھائی میں اور میری پوری فیملی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ جمیل تھینک یو سو مچ یار، آپ کا اور آپ کی فیملی کا بہت شکریہ کہ اتنی گرمی میں آپ میرا پروگرام سن رہے ہیں۔ گرمی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟

0: टूट गया सागर तो पीने का ख्याल आया, लुट गई जवानी तो जीने का ख्याल आया। ओए होए होए, गहरी बातें हैं जी, गहरी बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है मेरे साथ?
1: मोहम्मद हनीफ साहब, अपना कॉलोनी गिद्दी, जिला कश्मीर।
0: हनीफ साहब देख लें, आपकी इतनी लकी कॉल है कि हमने 6 बजे से पहले ले लिया कॉल।
1: हाँ, क्योंकि कुछ ऑफर भी कॉल लेते हैं, ऑनर भी लेते हैं।
0: अब ऑनर ले लिया हमने आपकी कॉल, क्या कहेंगे?
1: चल रही है।
0: जी जी, क्या कहेंगे आप ईद के 3rd दिन के मौके पर?
1: जी, पहले तो आपको और आपके तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक।
1: बाकी मैं जैसे सोया सोया जैसे जागा ना, तो मैंने ट्यून किया।
0: अच्छा,
1: ट्यून किया 101, तो आपकी आवाज सुनी, आप मैसेज कर रहे थे।
0: जी जी,
1: तो मैंने कहा यार ये इतनी नींद आ गई क्या, फिर टाइम देखा तो 5:50 थे।
0: अच्छा,
1: 5:50, मैंने कहा शायद पहले कॉल ली हूँ या बाद में कॉल। बजे के बाद तो मना खतरे से ना मैंने कॉल की, तो माशाल्लाह कॉल भी लगे। टॉपिक मैंने नहीं सुना। अगर
0: बस टॉपिक हमारा यही है कि इसी ईद पे आपने क्या स्पेशल किया?
1: इसी ईद पे यार हमने पहली ईद भी सादगी से गुजारी, ये ईद भी सादगी से गुजारी है, और इस ईद पे बिल्कुल कुर्बानी की है।
0: जबरदस्त।
1: और बाद ऐसा तो कुछ नहीं किया।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर आपने देखा होगा ट्रक रिक्शों के पीछे कोई शेर लिखा होता है, कोई अल्फाज लिखे होते हैं, क्या कभी आपने कोई ऐसा शेर या कुछ लिखा हुआ पढ़ा हो तो हमसे जरूर शेयर करें।
1: शेर तो कभी लिखे होते हैं।
0: जी जी, कोई जहन में है? चलें, कोई मसला नहीं है। खुश रहें जनाब, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने के लिए। खैर मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये थे जी हमारे साथ हनीफ साहब, इनकी कॉल बस समझे बस ले ही ली गई है। वेल, आपकी कॉल लेंगे 6 बजे के बाद, और एक गाना चलाते हैं, बड़ा खूबसूरत गाना है जी, अताउल्लाह खान, ईसा हेलवी और अली ज़फ़र हैं, और इसकी वीडियो भी बड़ी मज़े की है। गाने को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। आपने कहीं जाना मानो मन के साथ साथ रहना है, मैं लौट कर वापस आऊँगा 6 बजे की न्यूज़ ब्रेक के बाद। तब तक के लिए FM 101 के साथ साथ रहें और चाय का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि हमारा भी चाय का इंतज़ाम होने वाला है। चाय चाय चाय चाय चाहिए भाई, चाय चाहिए। चलें जी, हम ये गाना चलाते हैं, इस गाने को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा।

0: Smile and dial 111-000-101 FM.
1: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुने एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रजा की। आपका मेरा साथ रहता है हर जुमे की शाम 5 से 7 बजे तक। प्रोग्राम है जी हमारा बहुत ही अपना जाना पहचाना फन ऑन 101। 04221000101 हमसे रब्ते का नंबर है। देखते हैं हमें कौन कॉल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम पाकिस्तान जी, क्या हाल है आपका?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका
1: खैर मुबारक। खैर मुबारक। अपना नाम तो बताएं लिसनर्स को। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सही।
2: आप सीरियस?
1: कुछ बेहतर हुई है जी, बताएं।
2: जी मैंने कहा ईद का दिन तीसरा दिन है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और एक तरफ से दुख जो है ये हमें तोड़ के
1: जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आपकी ना आवाज ठीक नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल करें, जगह चेंज करके कीजिएगा। 04221000101 हमसे रब्ते का नंबर है। कॉल वहां जाके करें जहां से आवाज़ अच्छी आती है, जहां सिग्नल अच्छे मिलते हैं। हमसे बात कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी और इस ईद पर आपने क्या स्पेशल किया। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: ये हुई ना बात, आवाज़ अच्छी आ रही है। कौन है मेरे साथ?
3: अली रजा भाई, क्या हाल है? मैं अदरीस बात कर रहा हूँ।
1: जी अदरीस। जी अदरीस, आपको वेलकम करते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप।
3: ईद का तीसरा दिन मुबारक हो।
1: बहुत शुक्रिया
3: और
1: जी
3: आपको और आपकी फैमिली को और पूरी टीम को, सबको ईद मुबारक और ईद का तीसरा दिन मुबारक।
1: थैंक यू सो मच। मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी और इस ईद पे क्या स्पेशल किया आपने?
3: इस ईद पे हमने स्पेशल किया नमकीन गोश्त कढ़ाई बनाने का तजर्बा किया।
1: अच्छा, कैसा रहा था वो आपका तजर्बा?
3: और वो जबरदस्त रहा।
1: वाह वाह, अच्छा रहा। बहुत मटन की बनाई थी या बीफ की?
3: बीफ की।
1: बीफ की, वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। आई एम श्योर मजे का बना होगा।
3: बीफ कढ़ाई बनाई है हमने नमकीन।
1: अच्छा,
3: काली मिर्च डाल,
1: काली मिर्च वाली,
3: और अच्छी बनी है।
1: ठीक है।
3: मिसेस कहती भी बहुत कम मसाले डालते हैं और बहुत मतलब कम चीजें डाल के बनाने
1: का। तो वो आप अकेले ही खा गए हैं? अकेले अकेले खा गए आप?
3: जी
1: वो आप अकेले अकेले खा गए, हमें नहीं याद किया आपने।
3: यार आप आ जाओ, आपको।
1: हाँ यार आ जाता हूँ यार, बता किधर आना है यार, आ जाता हूँ यार।
3: तो आ जाओ, आपको ये नंबर मेरा, आप फ्री हो गए कॉल, मुझे कॉल करें।
1: थैंक यू सो मच।
3: पता क्या बात है, मैं आ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है।
1: ठीक है,
3: मुझे नजर नहीं आता।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
3: ठीक हो गया। वरना ये जो सारा एरिया ना, शिमला पहाड़ी लाहौर के सारे एरिए सब देखे।
1: वाह वाह वाह,
3: अगर अगर मैं ठीक होता ना तो जब से ये मैंने प्रोग्राम सुनने शुरू किए
1: जी जी,
3: अब तक मेरा आपके वन वन में चक्कर लग जाना।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, आप प्रोग्राम सुनते रह करें, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए।
3: और मेरी फील्ड भी ऐसी थी कि आप लोगों ने मुझे खुद याद करना।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच।
3: 3-4 साल से नजर चली गई है, मैं घर नहीं होता हूँ, मैं कुछ नहीं करता।
1: नहीं नहीं, आप कमाल करते हैं जनाब, आप खुश रहा करें, मुस्कुराया करें। आप हमें कॉल करते हैं यही बहुत है हमारे लिए।
3: मुस्कुराते हैं, हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब सुनने आरजीओ का प्रोग्राम सुनते हैं।
1: ठीक है, थैंक यू सो मच।
3: अच्छा लगता है।
1: थैंक यू सो मच।
3: सुनने वालों को दिली ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक।
3: कुछ कुछ मैं खुशी सलाम देना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर दे दें।
3: अगर वो सुन रहे हो तो
1: जी,
3: जो है ताया लतीफ मुगल है, ताया जी लियाकत अली मांगा मली से है,
1: ठीक
3: और
1: है।
3: ताया जी वो क्या कहते हैं बशीर है निमको वाले,
1: ठीक है,
3: और ताया जी बर्फी वाले,
1: ठीक है,
3: और चाचू शहजाद शाहबाग वाले,
1: ठीक है,
3: ठीक हो गया, और बाकी भाई न्याज ड्राइवर, इमानत गार्ड राम रजा चौधरी साहब, और जितने
1: ठीक है सबको सबको सबको सलाम सबको बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच ओके ओके ओके अल्लाह हाफिज 04211100101 हमसे रबते का नंबर है अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ये आवाज़ बहुत दूर से आ रही है क्या नाम है आपका जी अपना नाम बताइएगा
4: मैं बिस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ
1: बिस्मा लाहौर से बात कर रही हैं बिस्मा प्रोग्राम सुन रही हैं आप
4: हाँ जी सुन रहे हैं तो आवाज़ मैं आज का बोल रही थी
1: अच्छा अच्छा
4: वो फीवर है मुझे बहुत ही
1: ओहो दवाई वगैरह लें अल्लाह आपको आराम दे गोश्त ज्यादा तो नहीं खा लिया आपने
4: मटन कोरमा था नान के साथ वो भी दोपहर को खाया रात को सुबह भी कुछ नहीं खाया फिर रात को चाची वो कबाब थी
1: अभी इतना कुछ तो खा लिया बिस्मा तो फिर बुखार तो फिर होना ही था ना कि तबीयत तो खराब होनी थी मेरी दुआ है अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे मुझे ये बताएं कि इस ईद पे कुछ ऐसा स्पेशल किया आपने जो पहले कभी ना किया हो
4: आज मैंने कॉल की एफएम रेडियो 101 पे और अपने फेवरेट आर्टिस्ट से बात की तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं की
1: सही सही सही जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया
4: मैं आपसे नाराज हूँ
1: आप मुझसे नाराज हैं वो क्यों
4: वो इसलिए कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे मनाते हैं जो मुझसे नाराज है
1: नहीं आप क्यों नाराज हैं आप क्यों नाराज क्यों हैं मैं तो खुद अपने आप से नाराज हूँ आप क्यों नाराज हैं मुझसे नहीं आपको बुखार मैंने चढ़ाया
4: कल मुझे पता चला कल आज हम बच्चे आपके साथ उलासे तो साइड होने हुए थे तो कई बात हुई थी फर्स्ट टाइम कल फिर आपने बोला कि जो फर्स्ट टाइम आया है तो वो आती रही
1: उनको भी सलाम पहुंच गया बिल्कुल बिल्कुल
4: और आपने मुझे मनाया ही नहीं
1: मुझे पता तो चले आप नाराज क्यों हैं फिर मैं मना भी लूंगा ना
4: मैं आपसे नाराज हूं कि आपने बहुत देर से मेरी कॉल की
1: बहुत देर से मैंने 6:12 पे आपकी कॉल ले ली है आप देखें 2 मिनट हो गए आपकी कॉल चल रही है मैं तो आपकी कॉल ड्रॉप भी नहीं कर रहा कोई नाराज हो चले मैं आप सुनती रहे मैं आपको बताता हूँ ठीक है ओके ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अच्छा जब कोई नाराज़ हो जाए ना तो उसको मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपसे नाराज़ है उसको क्या पसंद है और फिर बात ये आती है कि वो है कौन जो आपसे नाराज है ठीक है ना जैसे हमारे लिसनर्स हैं वो अगर हमसे कोई नाराज हो जाए तो अगले शो में हम उनका उनकी पसंद का गाना लगा दें तो वो मान जाते हैं उनकी जरा तारीफें कर दें कि ये यार मेरे बड़े अच्छे लिसनर हैं तो वो फिर भी कहते हैं यार ये मेरी बड़ी तारीफें कर रहे हैं आज ये फैक्ट है कोई मेरी तारीफ कर दे आके कॉल पे या मैसेज पे तो मैं भी यही कहूंगा यार आज मेरी यहाँ बढ़िया तारीफा हो रही हैं तो ये एक नेचुरल फैक्ट है ठीक है अगर आपसे कोई नाराज हो तो उसको बेस्ट वे बनाने का ये होता है कि उसको फूल दे सकते हैं आप उसको चॉकलेट दे सकते हैं बस मैं तो इन दो चीज़ों के सहारा ज्यादातर लेता हूँ सलामुलेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
1: जी रिमशा आ गई हैं आप नहीं आपको चैन आया
5: नहीं मुझे कोई नहीं चैन आया
1: अच्छा बताएं ईद कैसी गुजरी है आपकी क्या स्पेशल किया है
5: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है स्पेशल बस ये है कि गर्मी है घर में रहो बाहर निकल के क्या करना है
1: अच्छा बिल्कुल और
5: अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चले मैं भी आ जाती हूँ मुझे आना मना थोड़े ना था
1: नहीं हमने तो आपको मना किया होगा
5: मैंने कहा चलो मैं आपकी तारीफ करती हूँ
1: नहीं नहीं मेरी बिल्कुल तारीफ ना कीजिएगा
5: اللہ ہم سے خود بھی کہہ رہے ہیں کوئی تعریف کرے تو اچھا لگتا ہے.
1: ہاں ہاں بالکل اچھا لگتا ہے, یہ ایک نیچرل سی بات ہے, اگر آپ کسی کی بھی تعریف کریں تو وہ اچھا لگے گا اس بندے کو.
5: جی میں آپ کی تعریف کروں؟
1: اب کر دیں, آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو میرے شو کی کیجیے گا تعریف.
5: میں صحیح بتاؤں آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت پیاری ہے اور آپ بالکل انرجی سے شو کرتے ہیں.
1: اچھا
5: اور جو ہے آپ کا انداز بھی سب سے الگ ہے.
1: ٹھیک ہے, وہ الگ کیا ہے, سب سے کیا الگ ہے؟
5: سب سے الگ یہ ہے کہ یعنی جو باتیں کرتے ہیں نا باقی بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں.
1: اچھا باقی سب پیاری نہیں کرتے؟
5: نہیں وہ بھی کرتے ہیں.
1: ٹھیک ہے,
5: یعنی جو آپ کا انداز ہے نا یعنی وہ تھوڑا فنی فنی موڈ میں ہوتا ہے.
1: اوکے
5: انرجی کے ساتھ آتے ہیں آپ.
1: اوکے اوکے ٹھیک ہے.
5: آپ نے اگلے شو میں کسائی بنا دیا تھا,
1: وہ کسائی والا سیگمنٹ ویسے آپ نے انجوائے کیا ہوگا.
5: میں نے واقعی بہت کیا, میں نے کہا ایسا واقعی کافی میں نے کم دیکھا ہے کہ اس طرح جو ہو ریڈیو پہ دوسروں کو کسائی بنا دیا جائے, بکرا بن جائے کوئی. واقعی مجھے بڑا مزہ آیا تھا وہ شو سن.
1: صحیح صحیح صحیح, زبردست.
5: یہ بھی کسی کسی کے ذہن کے اندر آتی ہیں ڈفرینٹ چیزیں.
1: بالکل بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. تھینک یو سو مچ رمشا, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے.
5: اور آپ مطلب یہ پوچھنے جو رکشے کے پیچھے شیر لکھے ہوتے ہیں,
1: ہاں بتاؤ کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟
5: میرے ذہن میں اس وقت ویسے نا زیادہ تر بھائی جو میں شعر بہت کم میں نے پڑھے ہیں.
1: نہیں شعر کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, کئیوں نے لکھا ہوتا ہے خیر نہ لا تے خیر نہ جا.
5: بالکل یہ بھی لکھا تھا لیکن پیچھے جو ہے نا سب سے زیادہ میں رکشے والوں کے نام ہی دیکھتی ہوں, ریاکت بھٹو والا, پتا نہیں اس طرح کے نام پڑھتی ہوں. اور ایک شعر ہے جو میں نے پڑھا تھا, مجھے دو شعر یاد ہیں,
1: سنائیں.
5: وقت ملنے پر وقت دینا محبت نہیں ہے, وقت ملنے پر وقت دینا محبت نہیں ہے, وقت نہ ہونے پر بھی وقت نکالنا محبت ہے.
1: واہ واہ واہ واہ واہ کیا بات ہے, زبردست زبردست, بہت اچھا شعر آپ نے پڑھا.
5: یہ بڑا ایک ہی میں نے یہ دیکھا تھا اور دوسرا شعر تھا کہ اتنی راتوں کو جاگتے ہوئے احساس ہوا, اتنی راتوں کو جاگتے ہوئے احساس ہوا, اگر محبت نہ ہوتی تو ہم بھی سو جاتے.
1: واہ کیا کہنے ہیں رمشا, میلا لوٹ لیا آپ نے.
5: اللہ ایسا میں میلا نہیں لوٹا, یہ جو ہے نا عام طور پہ لکھے ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ رکشوں کے پیچھے نا رکشے والوں کے نام ہی لکھے ہوتے ہیں,
1: نام لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا رمشا, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے.
5: میرے لیے کوئی پیارا سا جو ہے نا سانگ ڈیڈیکیٹ,
1: چلیں نیکسٹ سانگ آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. رائٹ ہوئے جی, یہ تھی ہمارے ساتھ رمشا. رمشا تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. ابھی ہمارے پاس ایک کمرشل بریک لائن اپ ہے, تو کمرشل بریک کی جانب بڑھتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, 101 کے ساتھ ساتھ رہنا, ایک چھوٹی سی بریک ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا, میں لوٹ کر واپس آ رہا ہوں.
6: تو میرا نام ڈاکٹر درا شہوار ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینے کی جلن, تیزابیت اور بار بار ڈکاروں کا آنا کھانے کی نالی کی سوزش اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اگر ان علامات کو بر وقت ڈاکٹر کو نہ دکھا جائے تو یہ معدے کی بڑی بیماری کا باعث بن سکتا ہے. اس ورلڈ ہیلتھ ڈائجسٹس ڈے پر ہم سب کو اپنی گٹ کا خیال رکھنا چاہیے, بیلنس ہیلدی نیوٹریشن ڈائٹ لینی چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اگر ہم ہیلدی ہیپی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری گٹ کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے.
7: یہ معلومات کیٹس فارما کی جانب سے ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے کے موقع پر مفاد عامہ کے لیے پیش کی گئی ہے.
8: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
9: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
10: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
11: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
12: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
13: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
14: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان, محکمہ صحت و آبادی, حکمت پنجاب.
0: smile and dial 111-111-FM.
1: ऑलराइट जी लिसनर्स, एक दफा फिर प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं और आप यहीं हैं ना। चाय पी ली आपने? चाय पी है कि नहीं पी? वेल, चाय तो हमने भी नहीं पी, हमें भी अभी तक चाय नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है मिल जाएगी अगले 5 से 7 मिनट में। ऐसा ही है ना। 0422111001 हमसे रब्ते का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। ओ अस्सलाम वालेकुम।
15: अर्ज किया है, शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए।
1: मैं नहीं सुनता।
15: मैं भाई शेर तो सुना दो, बाद चो ना सुनना, पहले सुना तो दियो ना।
1: मैं कान बंद कर रहे हैं, सुनाओ तुसी।
15: नहीं रो नहीं रहना करना। अर्ज किया है कि शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए।
1: अच्छा जी,
15: जाओ मैं नहीं सुनाता किसी और से।
1: आए आए आए आए आए आए आए आए की क्या जी?
15: जाओ मैं नहीं सुनाता किसी और से सुनिए।
1: क्या
15: नहीं समझ लगी?
1: क्या कहा?
15: ओ कहने को बहुत कुछ है पर आप सुने तो बताऊं।
1: आवाज नहीं आ रही आपकी।
15: आवाज नहीं आ रही
1: जी?
15: पानी तो इधर आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा जी।
1: शहजाद भाई कैसे हैं आप?
15: बाजी क्या बात है जी, माशाल्लाह दिल अच्छा हो जाए।
1: हर किसी के शो में ऐसे ही जाते हैं या नहीं?
15: नहीं मैं बहुत, आपको मालूम जब रात वाला शो सुनेंगे ना आप डॉक्टर साहब का, तो आपको पता चल जाएगा।
1: अच्छा
15: पहले सुनेंगे।
1: वाह जी,
15: हम तो यार दुनिया में आए खुशियां देने।
1: वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल।
15: हम खुद गम में रहते हैं लेकिन आप सबको खुश करते हैं।
1: आप गम में रहते हैं, मुझे लगा आप घर में रहते हैं।
15: जी गम में रहता हूँ, बहुत गम में।
1: घर में नहीं रहते?
15: नहीं, घर वाले बाहर निकालते जब गम में होता हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
15: जाके काम।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
15: हम खुद गम में रहते हैं लेकिन आप सबको खुश करते।
1: आप गम में रहते हैं, मुझे लगा आप घर में रहते।
15: जी गम में रहता हूँ, बहुत गम में।
1: घर में नहीं रहते?

0: अच्छा ठीक जबरदस्त।
1: माशाल्लाह गोश्त भी बाबा खा लिया है, बकरे की बाज भी निकल रही है बार बार, जो बकरा खाया था वो पता नहीं बोलता ज्यादा था, वो बोल रहे बार बार।
0: वो तो ये बकरा कहाँ से आ गया आपने?
1: बकरा जो खाया।
0: अच्छा आप में बकरा बोल रहा है? ओहो हो हो।
1: हाँ वो जो खादा वो बोल।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक हो गया। मुझे तो डर लग गया कहीं अगले शो में बकरा कॉल ना कर दे।
1: डर लग रहा क्या कर लेगा?
0: मैं क्या अगले शो में बकरा कॉल ना कर दे। ठीक हो गया शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या बात है जी शहजाद साहब की, क्या ही बात है। 04-2111-0011 हमसे रब्ते का नंबर है, आप कॉल कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ईद पर क्या स्पेशल किया। हर ईद पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्पेशल करता है, और वेल मैंने भी कुछ स्पेशल किया है, और मैंने कोशिश की है कि अच्छे वाले कबाब जो है ना वो खाए जाएं। ठीक है, मैंने खाने का कुछ स्पेशल किया, मैंने कहा यार थोड़े ज़्यादा खाऊं इस दफ़ा, मैंने बस यही स्पेशल किया। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है मेरे साथ?
2: हमना फ्रॉम जर्मनी।
0: जी हमना वेलकम करते हैं आपको। हमना
2: रजा भाई मैंने आपको फर्स्ट टाइम ईद पे सुना था और आज फर्स्ट टाइम कॉल की है।
0: थैंक यू सो मच, आपको वेलकम करते हैं।
2: फर्स्ट टाइम सुना है, मुझे आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी तो मैंने कहा नहीं अब मैं सुनूंगी।
0: थैंक यू सो मच हमना, बहुत शुक्रिया आपका। हमना मुझे ये बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजरी?
2: अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी, रेडियो के साथ ही गुजरी। मैं सारा दिन दो तीन दिन रेडियो के साथ ही गुजरी है।
0: जबरदस्त। तो हमारा ईद का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, मेरा और अरहम का?
2: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा ना, वैसे नासिर कसाई जो है ना वो फेमस हो गया रातों रात, पता है आपको? देख लें आपकी कॉल भी लग गई है। मुझे ये बताएं इस ईद पे कुछ स्पेशल किया आपने?
2: स्पेशल नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने तो सो रेडियो यानी कि तबीयत, मामा नहीं सुनने देती ना रेडियो, तबीयत खराब कर दी अपनी और रेडियो लगा दी, तबीयत खराब हो गई। अच्छी से मम्मा ने फिर रेडियो सुनने, मम्मा कहती हाँ तबीयत खराब है अंदर सो रही है वो। ये नहीं पता था मैं रेडियो सुन रही हूँ।
0: वैसे मुझे पता चला कि आपने इस ईद पे कुछ स्पेशल किया है, बताऊँ क्या?
2: बताए
0: आपने मेरे शो में कॉल की है। बिल्कुल ठीक है।
2: जी जरूर। जर्मनी से मेरी फ्रेंड सुन रही है, मैंने जर्मनी के लिए जाना है ना, मेरी छुट्टियां खुल गई हैं, 3 माह की मेरी छुट्टियां नहीं होती हैं, 1 माह की छुट्टी होती है। मैं तो जर्मनी चली जाऊंगी तो फिर सुनूंगी वहाँ से भी।
0: हाँ जरूर जरूर सुनिएगा, हमारा फेसबुक पेज भी आप लाइक करें और वहाँ पे भी आप हमें हमारे साथ शामिल हो
2: सकते हैं। टॉपिक से पूछ रहे, मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं इन चीजों को इग्नोर कर देती हूँ, मैं नहीं पढ़ती पढ़ती हूँ क्या लिखा हुआ।
0: वैसे पढ़ना चाहिए।
2: एक मैं जर्मनी में तो ये होते नहीं है ट्रक वाला।
0: हाँ वहाँ पे तो नहीं होते बिल्कुल।
2: तो यहाँ पे जब मैं आती हूँ तो यहाँ पे फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ, तो वजह ही
0: सही से
2: देख रही होती। और मुझे इतनी खुशी हो रही है आपने मेरी कॉल पिक कर दी।
0: थैंक यू सो मच। आप पूछ रहे हैं
2: फ्राइडे आते हैं?
0: हर फ्राइडे 5 से 7 बजे तक।
2: ठीक है। और मेरी जर्मनी के फ्रेंड सुन रही है, और हमने फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया, और कोई नेक्स्ट ट्रैक हमारा नाम देती है।
0: जी जरूर नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम करते हैं। Stay blessed. अल्लाह हाफिज। अल्लाह
2: हाफिज।
0: जरूर जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नारायण भाई जी, ये थी हमना हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी, और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में है, कुछ छुट्टियां भी आई हुई हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।

हमें अर्शमान सुन रहे हैं। अर्शमान हमें पहली दफा सुन रहे हैं भाई, आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें एक गाना सुनवाते हैं आपको, और वो गाना हम रिमशा के नाम करते हैं, वो गाना हम हमना और हमना की फ्रेंड्स के नाम करते हैं। ये गाना बड़ा ज़बरदस्त है, इस गाने को सुनिएगा, नदीम अब्बास की आवाज़ है। नदीम अब्बास लुने वाला आया है, आयो रमदान।

0: one above, FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
4: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
5: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
6: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
7: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
8: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
9: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
10: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
11: सुनते रहिए FM 101।
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: स्माइल एंड डायल 111-111-FM।
12: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर सुन रहे हैं, मुझे आरजे अली रजा कहते हैं। ईद का तीसरा दिन है और वो दिन भी अपने अहतमाम को है। शाम हो चुकी है, 6:37 हुआ जाते हैं और हमें कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
13: अस्सलाम वालेकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम।
13: जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक हो?
12: जी ठीक ठाक हाँ, तुसी सुनाओ।
13: अल्लाह पाक का करम और सुनाए। ईद मुबारक, हाजी मुबारक आपको, आपकी फैमिली को, पूरी टीम को, सब सुनने वालों को माशाल्लाह।
12: जी बहुत शुक्रिया, अपना नाम भी बताएं।
13: मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, पहचान नहीं लगा कौन बात कर रहा हूँ सियालकोट से। माशाल्लाह,
12: मुंडा सियालकोट ही तो नहीं गल कर रहे आफताब?
13: कोठी
12: पाकिस्तान च पानी है। बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि इस ईद पे क्या स्पेशल किया आपने?
13: माशाल्लाह ईद पे जनाब कुर्बानी की है और जो है ना बहुत कुछ किया है। माशाल्लाह
12: बहुत कुछ किया। अच्छा
13: जी जी, और खाना खाया है
12: जबरदस्त,
13: और सबसे स्पेशल चीज जो खाई है वो कसर है माशाल्लाह, मेरी पसंदीदा।
12: अच्छा वाह वाह वाह वाह वाह।
13: अच्छा हमारे प्यारे भाई वसीम अहमद साहब आज और फरहान भाई कैसे हैं?
12: वो दोनों ठीक ही होंगे।
13: आपको नहीं पता? आप
12: मुझे बिल्कुल पता है, दोनों ठीक हैं, दोनों हमारे बहुत ही प्यारे आरजे हैं, बहुत प्यारे। फरहान का शो भी है पता है आपको?
2: جی جی
12: فرحان کا شو بھی ہے 10 بجے
2: جی جی انشاءاللہ ان کو میں سنوں گا باقاعدہ کمنٹ بھی کروں گا اور انشاءاللہ کال بھی کروں گا انشاءاللہ
12: بالکل بالکل
2: بابا کے خیر صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے ان کو
12: بہت شکریہ بہت شکریہ
2: آئندہ حج آ رہا ہے عمرہ آ رہا ہے اللہ پاک سب کو عمرہ حج کروائے بہت ساری
12: آمین آمین بہت شکریہ
2: ایک تو بتائیں آپ کے لیے آپ کی فیملی
12: تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ
2: خوش رہیں آپ کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا بتائیں ذرا
12: کیا
2: آپ کا پروگرام جو ہوتا ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے ماشاء اللہ بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں
12: تھینک یو سو مچ بہت شکریہ یار بہت شکریہ یہ سب کو تو نہیں کہتے آپ آپ کا پروگرام بہت فنی ہوتا ہے یہ سب کو تو نہیں کہتے
2: دوستوں کو کہتا ہوں ہم جناب جب فری ہوتے ہیں دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ آپ کی فرحان بھائی کی وسیم احمد صاحب کی
12: زبردست
2: جو جو آرزی بہت اچھی کارکردگی سب آرزی اچھے ہیں سب کی کارکردگی اچھی ہے لیکن آپ فنی ہیں جناب آپ گل مل جاتے ہیں ماشاء اللہ
12: بہت شکریہ جی بہت شکریہ خوش رہیں
2: اللہ نے کہا جزاک اللہ
12: اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں یہ تھے ہمارے ساتھ ملک وسیم امان منڈا سیالکوٹی تھینک یو سو مچ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے السلام علیکم کالر
14: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
14: علی جی
12: جی
14: میں محمد سلمان بات کر رہا ہوں سلمان باد لاہور سے
12: جی سلمان صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں
14: علی صاحب آپ کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم اور عید الاضحیٰ مبارک
12: وعلیکم السلام خیر مبارک جی خیر مبارک
14: بیٹا آپ کا کتنے بجے تک ہوتا ہے یہ
12: میرا 7 بجے تک 7 بجے تک
14: اچھا
12: اس کے بعد کرنے ہی نہیں دیتے نہیں نہیں میں مختصر نہیں لے رہا میں تو مسلسل لے رہا ہوں
14: وہ آپ پوچھ رہے تھے کہ گاڑیوں کے پیچھے
12: جی جی
14: مارکس لکھے ہوتے ہیں
12: بالکل بتائیں
14: میں نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ کئی لوگ نا 30-35 سال گاڑی کو یہ

0: जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
1: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
2: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
3: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
4: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुनते रहिए FM 101।

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।

আপনি এফএম 101.1 কিয়া।

0: आपने एफएम 101 ट्यून किया?
1: मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं बच्चों के शोबाए सेहत से गुज़िश्ता 20 साल से वाबस्ता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, दुनिया भर में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है, तो इस साल का जो थीम है वो क्रॉनिक डायरिया के बारे में है। जब क्रॉनिक डायरिया का मतलब ये होता है कि जब डायरिया 15 दिन से ज्यादा रहे, बहुत सारी बीमारियां इससे वाबस्ता होती हैं। इस सिम्टम को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा जिसको क्रॉनिक डायरिया है उसको प्रॉपरली उसकी बीमारी की तशखीस होनी चाहिए। इससे एक और मसला मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। बच्चे, छोटे बच्चे फेलियर टू थ्राइव होते हैं, वो ग्रो नहीं करते, ना उनका वजन बढ़ता है ना उनका कद बढ़ता है। तो इट्स हाई टाइम कि हम ये इस इश्यू को भी देखें और इसको इग्नोर ना करें, इसको सीरियसली लें, बाकायदा तहकीक कराएं और उसका इलाज कराएं।
2: ये मालूमात केट्स फार्मा की जानिब से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के मौके पर मफादे आमा के लिए पेश की गई है।
0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
8: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
9: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुनते रहिए FM 101 101

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101 101.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
1: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

विल जी, वेलकम बैक। एक दफा फिर से खुश आमदीद। 10:41 हुए चाहते हैं आपका, हमारा साथ 12 बजे तक रहने वाला है। मेरा नाम है ज़िया अंजुम और प्रोग्राम है 101 वाइब। मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में आरजे रहमान अनवर और आरजे डॉक्स। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और बातचीत और गुफ्तगू और गपशप के सिलसिले आज चलने वाले हैं। थैंक यू सो मच आपका कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। इंतज़ार कर रहे थे, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। क्या बात है आपकी, कैसे कर लेते हैं इतना इंतज़ार। कितनी मुश्किलें हैं ना ज़िंदगी में, कितनी परेशानियाँ हैं, और फिर ईद वाले दिन भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ईद अपने आखिरी लम्हात में मौजूद है, ईद का तीसरा दिन है आज, स्टिल अभी तक है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम प्रॉपर इस्लामिक कैलेंडर देखें तो मगरिब के बाद हम ऑफिशियली ईद के तीसरे दिन से निकल के चौथे में तकरीबन एंटर हो चुके हुए, लेकिन फिर भी हम क्योंकि ज़रा अंग्रेज़ी कैलेंडर और अंग्रेज़ी टाइमिंग के हिसाब से भी चलते हैं, और फिर उसके बाद कुछ आदतें भी बिगड़ी हुई हैं, तो हम 12 बजे को भी बाज़ूकात नहीं मानते। तो अभी रात 12 बजे तक और फिर 12 बजे के बाद भी जब तक हम जाग रहे होंगे, आज ईद का तीसरा दिन ही है। क्या ख्याल है। अच्छा जी, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे प्यारे, मेरे साथी इस वक्त क्यों नहीं आ रहे माइक पे? आए ना, जरा आए, जरा बात करें, गुफ्तगू करें। गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे तो बात होगी ना, और बात करेंगे तो बात से बात बनेगी। एक तो आप बात नहीं करते, ऊपर से आपने कोई रेफ्रिजरेटर भी नहीं लिया हुआ कि हम कह सकें कि डॉलेंस लिया तो बात बनी। अच्छा जी, ठीक है, आप थोड़ी सी तैयारियां कर लें, थोड़ा सा मेकअप कर लें। आप मेकअप कर, हालांकि तो कोई तस्वीर वगैरह नहीं आनी अभी फिलहाल, तो कोई तस्वीर नहीं आनी, लेकिन फिर भी आप थोड़ी कर लें तैयारी, कर लें आवाज़ को, तो कोई गरारे कर लें, कोई गर्म पानी से गरारे कर लें, नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा नमक डाल के, ताकि आपकी आवाज़ थोड़ी बेहतर हो जाए, थोड़ी सेट हो जाए। तो फिर आरजे रहमान अनवर और आरजे डॉक्स भी यहाँ पे आके बात करें हमारे साथ, सिर्फ मैंने ही थोड़ी बोलना होता है। पता नहीं कैसे कर लेते हैं, समझ नहीं आती मुझे।

ओके जी, अभी तक हम बाकी तमाम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाए, सिर्फ लाहौर में हमें सुना जा रहा है। और मैंने रिक्वेस्ट की है इंजीनियर से, अपने टेक्निकल जो हमारा यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, कि भाईजान हमें ज़रा कनेक्ट करवा दें, नेटवर्क से कनेक्ट करवा दें, बाकी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और जो हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस है, वो भी तो सुनना चाह रही है ना हमें, उन तक भी तो हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। आरजे ज़िया अंजुम की, टॉप ऑफ द टॉप आरजे की आवाज भी तो पहुंचनी चाहिए ना, कहीं कोई महरूम ना रह जाए। वो हमारी एक लिस्टर हुआ करती थी, अब बड़े अरसे से गायब हैं, अक्सा उनका नाम था, और वो हमेशा मेरे प्रोग्राम में एक शेर जरूर भेजा करती थी। बड़ा मजेदार शेर था, तेरी आवाज जख्म भरती है मेरे मेहरबान बोला कर, तेरी आवाज जख्म भरती है मेरे मेहरबान बोला कर। ओए होए होए होए, क्या बात है जी, क्या बात है। ओके जी, अभी तक हम स्टिल लाहौर में ही सुने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। दिन ओ नहीं रहे, दिन ए भी नहीं रहने, की ख्याल है। अच्छा जी, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे आके फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आइएगा, सर्च कीजिएगा फेसबुक पे और सर्च करके लिखिएगा 101 FM लाहौर, हमारा ऑफिशियल फैन पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको 101 वाइब्स के नाम से एक पोस्ट मिलेगी, जिसमें आप मुझे, आरजे डॉक्स और रहमान को देख सकते हैं। उस पोस्ट पे आगे आपने कमेंट करना है, फीडबैक देनी है और बताना है कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आज ईद का तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, कल भी हम आपके साथ मौजूद थे, आज भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ हल्ला गुल्ला और फन शन लेके चलते रहें। बताइएगा कि ईद के तीन दिन आपके कैसे गुजरे, कैसे मामलात, लम्हात, और ईद रही उदास रही कि बहुत अच्छी रही, या फिर बस नॉर्मल दिनों की तरह ये ईद भी गुजर गई। गोश्त वोश्त की सुनाए, वैसे अभी तक नहीं, एक दफा तो खाया मैंने अभी तक मैंने सिर्फ एक ही दफा गोश्त खाया इस पूरी बड़ी ईद पे। ये अब आपने नहीं पूछना कि क्यों, कुछ गल्ला रास च रहन दिया करो पाए न। बहरहाल जी, 4471 पे कुछ मैसेजेस आए हैं, इनको शामिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहरिश, और सहरिश हमें सुन रही हैं लाहौर से, कहती हैं कि ज़िया भाई आज बहुत अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि जैसे आज वाकई ईद हो गई है। अरे क्या बात है सहरिश, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे साथ अच्छा जी, ये कौन है, आप तीनों बहुत नाइस हैं, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, आप सबको मैसेज करके अच्छा लगता है, आपको इसलिए दोबारा कर दिया मैसेज। सिद्रा फ्रॉम लाहौर से, ज़ियान जुम आपकी नाइस आवाज़ से है, माशाल्लाह कैसे कर लेते हैं आप, पैसे मिलते हैं जी, जब पैसे मिले तो फिर हो ही जाता है, क्या बात है ना। अच्छा, बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाता है, मतलब जो काम आपको करके खुशी मिलती है, जो काम करके आपको मज़ा आता है, जिस काम को करके आपको लगता है कि यार, जो काम आप मुफ्त करने को भी तैयार होते हो, जो काम आप बगैर मुआवजे के, बगैर पैसे के, बगैर किसी लालच के, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने जोश, अपने जज्बे, अपने जुनून, उसके लिए करना चाहते हो, हम कितने ऐसे काम हैं जो करते हैं ना,
अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और बाज़ुकात वो हम काम पैसे खर्च खर्च करके, बाज़ुकात बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके हम वो काम करते हैं। लेकिन ये सोचें कि अगर वही काम जो आपका पसंदीदा तरीन काम है, जिसको करके आपको बड़ी खुशी मिलती है, आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, उसके आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएं, ओए होए होए होए होए, आप समझ सकते हैं उस बंदे की फिर क्या क्या मौजें होंगी, फिर उसकी क्या वारे न्यारे हो जाएंगे। ऊपर से ये लोग शीशे के उस पार बिरयानियां खा रहे हैं, बिरयानियां है के पुलाव है, खुशबू मुझे यहां तक आ रही है, और मैं बेचारा सुबह का भूखा, अभी तक कुछ खा के नहीं, और मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, सुला भी नहीं मार रहे, दूर दूर से शीशे के उस पार आप पे ही खाई जाओ पायन ठीक है। अच्छा, आज के लिए एक और प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को कहते हैं फूड व्लॉगर्स। अच्छा, फूड ब्लॉगर्स एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका हुआ है इस वक्त, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में फूड ब्लॉगिंग करते हैं। अब जिस बंदे को खाना खाने का शौक़ है और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाने का शौक़ है, आप ये सोचें कि उस बंदे को रेस्टोरेंट्स वाले ख़ुद बुलाएँ और कहें कि आप अपनी मर्ज़ी की, बल्कि हमारे इस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी और अच्छी वाली डिश आप खाएँ, हम आपको सर्व करते हैं और स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ सर्व करते हैं, और ये सब कुछ खाने के बाद आपको पैसे भी नहीं देने, बस एक छोटी सी वीडियो बना देनी है। तो आप सोचेंगे उस बंदे के कितने वारे न्यारे होंगे, वो कहेगा कि यार मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मुझे प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, और मुझे मेरे पसंद की चीज़ें भी खाने को मिल रही हैं, और फिर वीडियो भी मैंने खुद ही अपने हिसाब से बनानी है, तो कितना मज़ा आता होगा ना। ओए होए होए होए होए होए, और मेरे दोस्त, मेरे सज्जन, मेरे बेली किथे चले गए ने, रहमान अनवर ते आरजे डॉक्स आयो पाएं। अच्छा, दूर दूर से देख के मुझे हंस रहे हैं, मुझे पेश नहीं की जा रही ना बिरयानी ना पुलाव, लेकिन दूर दूर से देख के मुझे हंस रहे हैं लोग, कैसे हंस लेते हैं। ऐ पाइन, पता नहीं कौन है कॉल करी जा रहे हैं। अच्छा जी, नवाल गार्डन, नवाल गुलजार, नवाल कहती हैं कि गुजार ली तुमने ईद फकत अपनों में, तरसता रहा मैं फकत एक झलक के लिए। नवाल प्लीज ऐसे शेर ना भेजो, मैं पहली बहुत दुखी हूं, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना दुखी हूं, ऊपर से तुम ऐसे दुखी दुखी शेर भेजोगी और फिर मुझे याद दिलाओगी वो सारे गुजरे जमाने जब मुझसे मेरे महबूब बिछड़ गए थे। पता है आपको ईद के ऊपर फिर ऐसी चीजें कितनी ज्यादा हिट करती हैं, समझ है इस बात की, पता है, अंदाजा है, ऐसे करना होता है ना तो पहले बता दिया करो।

ओके जी, इस वक्त हम नेटवर्क पे मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जहां जहां पे भी मेरी आवाज सुनी जा रही है, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम 101 वाइब्स पे। और ये प्रोग्राम जो है एक कंबाइंड प्रोग्राम है जिसमें मैं यानी कि आरजे ज़ियानजुम, टॉप ऑफ द टॉप आरजे ज़ियानजुम, इसके साथ मेरे साथ मौजूद होंगे अभी कुछ ही देर में। हालांकि मैं देख चुका हूं कि वो यहीं पे आसपास कहीं पे फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास यहाँ पे माइक पे नहीं आ रहे। आरजे रहमान अनवर होंगे और उसके साथ साथ आरजे डॉक्स होंगे, ये दोनों गायब हैं, न जाने क्यों गायब हैं, उनको अब तक आ जाना चाहिए था। और यकीनन आपका हमारा साथ 12 बजे से ऊपर ही जाने वाला है। कॉल्स आ रही हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कॉल पे कौन है। 042-111-0101 पे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस के साथ साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मर्जी है रहमान अनवर साहब आपकी, ये जो आप तशरीफ लाए हैं ना इतनी देर से, ये बहुत गलत बात है, इंतहाई गलत बात है। अच्छा चॉकलेट लेके आए हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं। पिघली हुई चॉकलेट, ये जो मई जून में जो पिघली हुई चॉकलेटें देते हैं ना लोग, कैसे कर लेते हैं। रहमान अनवर साहब बिल आखिर स्टूडियो में तशरीफ ले आए हैं, माइक के सामने नहीं आ रहे, चॉकलेट खोल खोल के पिघली हुई खा रहे हैं, कैसे कर लेते हैं यार आप? आपको तो इस चीज के पैसे भी नहीं मिलते। आ जाएं, बैठें प्लीज, तशरीफ रखिए। गुड्डू

0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। I love FM 101.
8: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
9: आप सुन रहे हैं FM 101।

0: तुझे डांस करना पड़ेगा साथ मेरे।
1: मुझे सिर्फ एक ही डांस आता है मेरे भाई।
0: ये कैसे बात कर रहे हैं?
1: और उस डांस को डांस नहीं कहते, रक्स कहते हैं, रक्स। जब भी डांस की बात करनी है तो
0: रक्स,
1: इज्जत से बात करनी,
0: रक्स
1: रक्स कहना है, रक्स
0: रक्स।
1: ज़िया अंजुम
0: रक्कासा,
1: ज़िया अंजुम मुझे रक्स करके दिखाओ।
0: रक्स करके दिखाओ। हाँ, उठो यहाँ से, नाचो नाच।
1: मेरे भाई माइक पे बहुत बहुत।
0: अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। आप थोड़ा सा ना, मेरी आंखें खुली है।
1: खुल गई है,
0: खुली गई है। क्या है, क्या
1: हुए हुए कर कर के और इस तरह तेज म्यूजिक लगा के तुम ये समझते हो?
0: हाँ, नहीं, हाँ लग रहा है, कसम से लोग हंस रहे हैं।
1: तुम
0: रक्स वाली बात में हंस रहे हैं।
1: ऐसे तफरी करोगे अब तुम?
0: हाँ ऐसे ही करूंगा, मेरे पास यही है, यही है।
1: क्या बात है,
0: ये देखो मैं नाच के दिखाऊंगा लोगों को।
1: बड़ी डबियों वाली शर्ट पहन के आयो।
0: थैंक यू सो मच। आज मेरे आउटफिट का रेट नहीं पता करोगे?
1: इसके ऊपर क्या शतरंज खेलते हैं लोग? क्या करते हैं?
0: गंदी बातें ना करो मेरे साथ कि मेरी शर्ट के ऊपर शतरंज खेलते हैं लोग। हैं
1: स्टापू खेलते हैं इस पे? क्या खेलते हैं
0: स्टापू? क्या होता है
1: स्टापू? स्टापू नहीं पता तुम?
0: नहीं यार, क्या होता
1: यार? तुमने बचपन नहीं गुजारा, डायरेक्ट बड़े हो गए थे?
0: नहीं, छोटा था मैं, लेकिन वहां पे हम वंच खेलते थे उसकी जगह। स्टापू नहीं हमने कभी खेला, क्योंकि ये लड़कियों का खेल होता था, सुना था मैंने। वो स्टापू खेल रही है,
1: इस इंसान को सब पता है।
0: लेकिन तुझे तो पूरी तस्नीह के साथ पता है, तू तो खेलता था उनके साथ है। हम वंच खेलते थे।
1: क्या
0: मर्दाना खेल?
1: क्या खेलते थे?
0: वंच।
1: क्या है, क्या
0: वंच?
1: क्या हुआ, क्या तुझे
0: वंच? खुला तू, खुला उठा तू
1: वंच।
0: ये
1: क्या खेल होता है
0: यार? देखो लोटे से ना,
1: लोटे से कौन
0: उसमें पानी डाल,
1: चांदी का लोटा, लोहे का लोटा, पीतल का लोटा, प्लास्टिक का लोटा, कौन सा लोटा?
0: मैं उस लोटे की बात नहीं कर सकता।
1: कौन सा लोटा?
0: जिसको कहते हैं कि लोटा ले आ यार,
1: वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दे, वो वाला लोटा।
0: ये वाला सही तूने कहा है ना, पहले ये बता दे मुझे।
1: मैं हमेशा सही कहता हूँ, दरोस्त।
0: हाँ लौटा दे, लौटा दे,
1: लौटा दे।
0: हाँ उस वक्त उसको जरूरत होती है ना इस चीज की।
1: हाँ,
0: उसके में उसमें पानी डालने के बाद फिर हम ऐसे लाइने खींचते थे, जितने हानी होते थे ना, एक दो तीन चार हानी है अगर, और उसमें पांच हानी है तो उसमें चार लाइने और एक लंबी लाइन, उन लाइनों के दरमियान में। यार ऐसे ना कर, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश मत कर।
1: दबा नहीं रहा, बहुत ज्यादा लाउड जा रही है।
0: फिर ठीक है, फिर ठीक है, दबाने की कोशिश ना करना।
1: फट रही थी आवाज, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा लो किया है। ब्रो समझा करो ब्रो,
0: क्या हो रही थी?
1: आवाज ब्लास्ट कर रही थी। तो इस वजह से ना मैंने उसको थोड़ा सा
0: दोबारा प्ले कर।
1: क्या कर दिया? कर दिया,
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है।
1: अपना ही, अपना ही।
0: पांच लोग होते थे, पानी के साथ उसकी लकीरें खींचते थे, यानी कि वो इस तरह की डब्बियां ही बनाते थे। समझ लो ये एक लाइन है, ये इधर वाली लाइन है, दूसरी लाइन है, फिर ये तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है, और वो चार पांच लाइन के अंदर ना पांच लड़के होते थे, उनके भी पांच होते थे, हमारे भी पांच होते थे। भागना होता था एक साइड से दूसरी साइड पे, उन लाइनों को पार करते हुए। उन लोगों का हाथ अगर टच हो गया तो वहां पे गेम खत्म, हार गया। हम ये खेलते थे
1: रेलवे लाइन,
0: ऐसे छोटी सी जूती लेकर टक टक टक।
1: ये जो टक टक करते हुए जो आपने ये रक्स का एक खास स्टेप लिया है ना,
0: कैसे
1: रक्स का एक खास स्टेप?
0: हाँ
1: भाई वाह,
0: थैंक यू,
1: दोबारा
0: है छोटी सी जूती लेकर टक टक टक शिताब।
1: ये जो टक टक करते हुए जो आपने ये रक्स का एक खास स्टेप लिया है ना,
0: कैसे
1: रक्स का एक खास

0: रूप होंगे।
1: इच्छाधारी जो नाग होता है,
0: हाँ,
1: क्या उसके हजारों रूप होते हैं?
0: 100 साल बाद ना वो बंदा बन जाता है?
1: नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं सिर्फ मिथ है।
0: मिथ ही तो हमें पसंद है।
1: नहीं
0: मेथी
1: मुझे
0: अच्छा कॉल ले।
1: हाँ
2: हुण मैं तो भी बोर हो गया, चेंज करके कोई और ला।
3: हेलो
4: अस्सलाम
3: वालेकुम। सलाम,
4: कैसे हैं सर?
3: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
4: मैं ठीक हूँ। रहमान कोजागर भी कैसे हैं?
3: और रहमान कोजागर आप बताएं कैसे हैं?
5: मैं भी ठीक हूँ।
3: लग नहीं रहे
5: दिनता था।
3: कौन बात कर रही है?
4: अल सुबह
5: ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
3: सुबह क्यों इतनी उदास बैठी हो? आओ तुम्हें सुनाऊं मजे मजे की कहानियां। क्यों इतनी उदास हो? इतने राम राम से स्लो स्लो, ईद का दिन है, थोड़ा हम इतना शुगल मेला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम भी आगे कोई थोड़ी सी करो ना ऐसी बात।
4: सर शुगल
3: नहीं, कोई इतनी एनर्जी क्यों डाउन है? इतनी एनर्जी क्यों डाउन है
4: सर? काम करके थक गई।
3: ओ रोटी नहीं खाई?
4: नहीं अभी नहीं खाई।
3: ओ रोटी खा लो, शब्बत पी लो उसके बाद। ओ सबा रोटी छोटी खाओ।
5: अल सबा
3: गोश्त वोशत खाओ।
5: हाँ
3: ठीक हो जाएगा
5: यार। वो ना खाओ, उससे और ज्यादा एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाएगी।
3: गोश्त में एनर्जी नहीं होती?
5: नहीं होती।
3: क्या
2: बोला कसम से, एक लफ्ज भी नहीं समझ आया। क्या बोला
3: दोबारा बोलो।
2: दोबारा ऐसे ही बोला प्लीज, बिल्कुल ऐसे ही। रोक दिया, पर रोकना नहीं चाहता था। एंड पे मैं कहना चाहता था हाँ बिल्कुल ठीक कह रही।
3: नहीं मेरी आंखें एकदम चुंधिया गई थी, मैं कहीं क्या हो रहा है,
2: क्या हो गई थी?
3: चुंधिया
4: अभी तो आपकी
3: होगा है, अभी आपके पेट में सर्दी है क्या?
4: नहीं
3: क्या क्या है? हमारे पेट में सर्दी है।
2: हमारे पेट में सर्दी है।
3: वालेकुम अस्सलाम,
6: क्या हाल है सर?
3: जनाब
6: मोहतरम जनाब किबला हुजूर,
7: आप लोगों की वजह से मुंह ठीक हो जाता है।
3: आए ने आप खुद आए ने, ते तशरीफ लेके आए ने मायने। जनाबे वाला मोहतरम किबला हुजूर, रेडियो पाकिस्तान दी जान, साडा मान ते शान, आरजे
2: आज तो तुम क्या था आ, ते मैं भी कहने लगा आ। यार वो माइक तो उनका ऑन करो यार।
3: उनका माइक ऑन है?
2: नहीं आवाज नहीं आ रही।
3: आवाज नहीं आ रही।
2: हाँ इसको चेंज करके ना माइक को दोबारा से सेट करो। यस अब आ रही।
8: ओके सलाम अलैकुम। मैं यकीन करें आप लोग अगर ना होते, आपके अलावा कोई भी होता, कुछ भी होता, मैं नहीं सी आना।
2: क्यों, क्या वजह?
8: एक तो मतलब मसरूफियत थी, मैं वहां से दौड़ा दौड़ा सीधा पहुंचा हूँ।
2: आप हमें बता देते ना।
8: नहीं फिर मजा, आप कभी कभी मुयसर होते हैं, जिया भाई से मुलाकात हो।
2: अरे नहीं ऐसा नहीं,
8: यकीन करें आप कभी कभी मुयसर होते हैं।
2: मेरे कभी कभी मुयसर होने की वजह से आज आप अपनी इतनी इंतहाई सहरा मीटिंग छोड़ के आए?
8: नहीं मीटिंग शीटिंग में कर रहा है।
1: कर रहे हो ना।
8: जिस तरह बरसात में जो है ना
1: वो निकलते हैं,
8: नहीं जिस तरह बारिशें होती है ना सहरा में कम, आप भी उसी तरह से कम ही मुयस्सर होते हैं। शाह जी कॉफी पिलाएं मुझे।
0: अच्छा आदमी है, फिर भी अच्छा आदमी है, मुनासिब है,
8: बंदा अच्छा है।
1: अच्छा हूँ ना,
8: बंदा बहुत अच्छा है।
1: अच्छा हूँ,
8: अगले साल इन्हें कट्टा बना लेना। मैं
0: कट्टा नहीं बनेगा,
1: कट्टा नहीं है, बैल बड़ा, मतलब छोटा, वो ऐसी छोटी बातें नहीं करते, बड़ा बड़ा हूँ मैं,
0: बड़ा जानवर है,
1: विंग्स है,
0: बड़ा जानवर है, छोटे पिंजरे में नहीं
1: आया, आसमान पे रहता हूँ।
8: लोकी ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन गाय करते हैं, ऐसी नाइजीरियन कट्टा कर लांगे।
1: यार नाइजीरियन क्यों कहते हैं हमेशा?
0: जो आप लीबियन बोलते हो ना,
1: देखो इसको याद है, ये पक्का दोस्त है मेरा।
0: नहीं मुझे किसी वजह से याद है ना।
1: किस वजह से
0: बताऊंगा?
1: हाँ तुम्हें तो पता ही होगा ना,
0: मुझे तो पता है ना,
1: तुम्हें तो वजह पता ही है,
0: मुझे तो फिर सब पता है ना।
8: ठीक कह रहे हैं जी। एनीवेज जी, आप मैसेज मूसेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे?
0: बड़े मैसेज कर रहे हैं, सिद्रा का मैसेज आया था अभी।
1: कहते एनीवेज जी, आप मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं ना, भूले तो नहीं ना?
8: हम मैसेज कर रहे हैं, अगर नहीं काट रहे तो जल्दी से मैसेज करें। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखनी है, फिर स्पेस देनी है, और उसके बाद अपना नाम और पैगाम लिख के इसको भेज देना है 4471 पर। और हमसे बात करने के लिए आपने अभी मिलाना 04211100101। और यहाँ पे फिर हमारे पास एक लिबियन बैठे हुए हैं,
1: अब सही बोला है,
8: और उनसे भी आप बात कर सकते हैं। और एक हमारे पास ठेठ किस्म
1: बड़ा सही
8: लौड़िए बैठे हुए हैं, लौड़िए,
1: हाँ लौड़िए, हाँ
8: लौड़िए बैठे हैं
1: इस वक्त। वैसे हम सभी लौड़िए,
0: आगे पीछे मैं सही प्रोग्राम करता हूँ, बस आज जो होता है ना कभी कभी इस तरह, तो फिर हम ऐसे प्रोग्राम भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
8: और ना मेरी बात सुने, वैसे भी हम,
1: लेकिन एक बार आपको हेड पे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, ठीक है ना?
8: देखे हम बड़ी वैसे संजीदा संजीदा सी बातें करते रहते हैं, कभी कभी ऐसी बातें भी सुन लेनी चाहिए। अब आपको मैं कहूँ, हाँ भाई अपना आप ये बताएं आरजे रहमान, आपकी जर्नी जो शुरू हुई थी लीबिया से,
1: जर्नी एक तो मुझे ना बाद बाद में गाली लग रही है, एक एक लव के बाद ना लगता है अभी गाली आएगी, इसके बाद तो होनी चाहिए गाली, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ, यूड़ी आ रही है, वजह क्या है इसकी? है आके आके गुली है थोड़ी थोड़ी,
8: ये लौड़िया नहीं है,
1: नहीं
8: ये लौड़िया नहीं है
0: यार, क्या हो गया यार, तू जो ऐसी बातें ना किया कर,
8: तो सुबह क्या खाया था
1: यार, ये सीरियस हो गया ऐसा, वो थोड़ा सा स्वरी तो बनाया करना मुंह भी साथ, ऐसे कैसी ऐसी वो तीनों क्या कर, ऐसे ना क्या कर, मुझे डर जाता हूँ मैं थोड़ा सा
0: यार। आज कौन सा लाइव स्ट्रीम चल रही है जो मैं सीरियस होके बात ना करूं, मेरी
1: लाइव स्ट्रीम चलाए, ऐसी बात करनी है हमने सीरियसली बात,
8: मैं नहीं चलाऊंगा।
0: एक दफा मैं एक बड़ा मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ, एक दफा मैं एक जगह पे गया,
1: सुनो,
0: एक फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री थी, और वहां पे ना हम एक डील करने गए थे, लेदर की फैक्ट्री थी, और उनके पास ना बड़ी प्रीमियम किस्म की ना जैकेट्स थी, जो लेदर की जैकेट्स होती हैं, मेंस वेयर। अच्छा अब हम वहां पे बैठे हुए हैं, उनके मेन जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, तो डील चल रही है, अचानक से वो जो ऑनर था ना उसका बेटा है, और उसने आके ना अपने पापा से बात किया, पापा यार वो गाड़ी की चाबी किधर है? मैं बड़ा सीरियस बैठा हुआ था, मैंने इतनी मुश्किलों से अपनी हंसी कंट्रोल की ना, इतने सीरियस हम बैठे हुए थे, इतनी सीरियस बात चल रही थी, पापा यार वो गाड़ी की चाबी किधर है?
1: उसने मतलब कि वो काफी नौजवान, मतलब कि
0: सही उम्र पर, वो बोलते ही ऐसे थे। अब वो बैठे हुए, मैं अपने पार्टनर के साथ गया था, मैं उसकी शक्ल देखूंगा, मेरी शक्ल देखे, हम इतनी मुश्किल से हमारे मुंह लाल सुरख, हम मैं अपना कभी नाक पकड़ूं कि यार हंसी ना निकल दे, कभी मुंह क्या कभी इधर करूं कभी इधर करूं, मैं बड़ी मुश्किलों से बहाना मार के यार मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूं, तो मैं
1: हंस के आया,
0: बाहर गया और जाके मैं हंस के आया, यार ये क्या हो रहा था।
8: जिस तरह रहमान भी एक शो में
1: मेरे साथ ऐसे नहीं होता,
8: उठ के यहाँ से बाहर चला गया, बाहर जाके लेट गया,
1: नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं होता, मैं इधर ही हंस पड़ता होता हूँ,
8: मैं ये सोच रहा हूँ वो वाली वीडियो ना आपके मुंह पे स्माइली लगा के अपलोड कर दूं पेज,
1: गलत बात है यार, आपके पास क्यों है वो वीडियो?
0: जब तुम मशहूर हो जाओगे ना, अगर तुम कभी मशहूर हो गए,
1: अगर क्यों लगाया तुम,
0: अगर कभी मेरी याद आए तो अगर कभी तुम मशहूर हो गए
1: बीच में शायरी भी कर देता है, बीच में कंफ्यूज किया हुआ इसने मुझे, क्या कर रहा है
0: यार मैं आगे। अच्छा, तो सही शो करता हूं,
1: मैं मशहूर हो जाऊं तो बता आगे,
0: तो वो वाली वीडियो फिर काम आएगी, महंगी बिकेगी।
1: उस टाइम तक पॉइंट संभाल के रख लेना है, अगला जन्म यानी।
0: वो होता है ना कि जब कोई बंदा मशहूर हो जाता है और जब थोड़ा पावर में आ जाता है, तो फिर उससे अपनी मर्जी के अगर कोई बयान दिलवाने हो, अपनी मर्जी के फैसले करवाने हो, तो उनकी वीडियो संभाल के रखी होती है लोगों ने।
1: ऐसे भी होता है।
0: हाँ जी,
1: मैं क्या बताऊं कौन सा मशहूर।
8: आज आज फिर ईद खत्म हो गई है।
0: नहीं अभी नहीं,
1: पहले सोचा फरीद किया, खत्म हो गई तो मुझे याद आया नहीं ईद किया।
8: मुझे ना बड़ा गुस्सा आया हुआ था, फिर मैंने गुस्सा निकालना था पड़ा,
1: निकाल दिया ना।
8: अस्सलाम वालेकुम मास्टर डॉग्स, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ।
1: ये ठीक है, ये ठीक है।
8: फिर आगे क्या लिखा है आपने? नाइस वॉइस, थैंक यू थैंक यू। मैं निजामुद्दीन जैकरानी, बलूचिस्तान जैकबाबाद। डॉक्स भाई आज मैं बहुत उदास, यकीन करें मैं भी बड़ा उदास हूँ, यकीन माने
1: मैं भी उदास,
8: मैं भी यकीन करें मैं भी जब उदास होता हूँ, मैं भी दिल करता है मैं भी आपकी तरह किसी को बातें सुनाऊँ, मैसेज लिखूँ। वो मुझे मेरी उदासी दूर कराए।
1: मैं भी उदास हो गया,
8: क्यों उदास हो गए निजामुद्दीन भाई, क्यों उदास हो गए, क्या हो गया, किसको याद कर रहे हैं आप? मुझे किसी ने मैसेज किया, याद आ रहा कितने, क्या आपकी बातें सुन के लग रहा होता है जैसे आप अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। अच्छा। यहाँ आप किसी की लव स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो मैं सोचने लग गया मैंने किसकी लव स्टोरी सुनाई है,
1: भूल गए होंगे।
8: लेकिन मैं तो लव स्टोरियों पे बात ही बड़ी कम करता हूँ।
1: हैं? हाँ। अच्छा,
8: तो मैं किए लव स्टोरी पे बात कभी
1: करते रहते हैं आप लव स्टोरीज पे बातें? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी आप बात करते हैं किसी मोहब्बत की बात होती है। बीजीएम चेंज कर दे, चेंज कर दे, सीरियस गल्ला होने लगी है, मोहब्बत ले आगे चले,
0: कैमरा बंद कर दे,
1: कैमरा बंद कर दे, बीजीएम चेंज कर दे,
0: मैं तेनू कह रहा कैमरा
1: बंद कर दे, है टिक्कू गुरू ले आ दे मेनू। मैं अपनी बंसी नाल नचना है।
8: कॉल ले भाई, जा भाई कॉल ले, कॉल ले।
9: हेलो,
8: वालेकुम अस्सलाम।
10: फजल महमूद बात कर रहा हूँ कराची से, गलत कॉलोनी वाला।
8: क्या हाल है फजल भाई, वहाँ से आ रही आवाज?
10: अच्छा, क्यों सुन रहा हूँ आप लोगों का यार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत लकी हो रही है बीच में।
8: हाँ सही कह रहे हैं आप।
10: हाँ तो मैंने बोला हम भी कोई फोन मिला ले यार,
8: नमक छिड़कने आ गए हैं, मस्ती बोल के
0: थोड़ी मस्ती करके थोड़ी कोशिश कर रहे हैं हम
10: यार। मैंने कहा नमक छिड़कने यार, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मैंने बोला मैं भी थोड़ी एनर्जी में इजाफा कर लूँ अपने।
1: आप भी फनी नहीं है,
0: आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए।
10: मेरी बात सुने, मुझे भी कुछ दोस्त सुन रहा हूँ यार, सॉन्ग वॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगा मैं।
8: हम सॉन्ग चलाते हैं, वॉन्ग नहीं चलाते।
10: चलो फिर क्या कर सकते हैं,
8: बताएं
10: आपकी मर्जी में नाम ले सकता हूँ, नाम
8: बताएं बताएं, नाम ले ना
10: यार। वो 25 नंबर वाली निदा हो गई, और डॉक्टर शफक हो गई, श्यामा बाद वाली, और मिसेज रियाज हो गई,
8: और कोई बंदा भी है
0: औरतों
10: की यार असल
8: में सही कह रहा हूँ, जख्मों पे नमक
10: छिड़कना।
8: बकरियों की कुर्बानी मत किया कीजिए, दो बकरियों की इकट्ठी या कोश एक दम एक छुरी से
1: क्या बात है।
3: उसके कदम भी बनवा के खा ले।
8: तस्वीरों से गुजारा कर रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, ज्यादातर वैसे रील से गुजारा करते हैं।
3: आपका स्लो है साबुन, थोड़ा वीडियोस की तरफ आए, तस्वीरें तो अब पुराने दौर की बात होगी।
8: क्या बनाते हैं?
2: कुछ बनाते हैं लेकिन
8: वीडियो गेम बनाते हैं।
3: अरे यार टेकन थ्री यार चैंपियन लगते हैं मुझे टेकन
8: थ्री। नहीं वो गेम बकरी बनाते हैं जिसपे अक्सर बैन लग जाता है।
10: बचपना होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा बचपना भी होना चाहिए, भले उम्र भले ज्यादा
3: हो। टेकन थ्री है कि चीची मीची के आपके बनाते हैं?
8: बहुत अच्छा लगा आपने और आपने अच्छी अच्छी बातें की, आपने थोड़ा सा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट की जो सराहनीय को बढ़ाया।
3: भाई कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आते जाते रात।
10: थैंक यू, थैंक यू। बात और करनी थी।
8: नहीं नहीं नहीं इतना कोई फर्क नहीं बैठा, ब्लॉक नहीं
10: किया
8: होगा। नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, यकीन जाने आपको, आपको क्या किसी को भी ब्लॉक।
10: भाई मेरी बात हो, आपके शो सुन रहा था उस दिन, मैंने कुछ कमेंट किए थे उसके बाद जब मैं
8: अगर कभी आप गलती से कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर दे फेसबुक आपको खुद बैन करता
10: है।
8: नहीं जरूरी नहीं है, फेसबुक की पॉलिसी होती है कुछ ऐसे,
2: दिल में भी अगर ख्याल,
8: अगर बुरा ख्याल भी आए तो फेसबुक ब्लॉक कर देता है। चेक कर लेते हैं हमारे, हमारी साइड से कभी आज तक हुआ नहीं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इसको चेक कर लेते
3: हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने हमें कॉल की, आप कॉल करते हैं हमें, हमारा दिल लगा रहता है, अच्छे आदमी हैं आप। आज डॉग्स वाइब्स आ चुकी हैं, आ चुके हैं, ये चुकी हैं कि चुके हैं आज डॉग्स वाइब्स,
8: ये चुके हुए चुकी हैं।
3: वाह, उस्मान इमदाद कहते, उस्मान बिन इमदाद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम टू ग्रेट आरजे डॉक्स ज़िया एंड रहमान भाई, जद्दा से सुन रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आऊंगा पाकिस्तान और आपके लिए बहुत सारे तोहफे तहाइफ।
8: तोहफे तहाइफ नहीं चाहिए, 5 किलो का पैकेट चाहिए अजवा का, सीधा बता रही हूँ मैं। और एक भाई वो कहवा जो है ना उसका भी पैकेट ले आना यार,
3: सऊदी कहवा।
8: अच्छा होगा अगर वो मदीना वाली जो मार्केट है ना वहां से लेके आना, वो बेसमेंट में उसके पास वो भी होती है, बड़ी बड़ी बार्स भी पड़ी होती है चॉकलेट वाली। वो भी ले आना भाई।
3: रहमान साहब आप क्यों नहीं बोल रहे, बात कर रहे, आप क्यों इतने उदास हैं?
2: मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या मंगवाऊं, मेरा भी कुछ वहां से ना मदीना से कुछ मंगवाने का दिल चाह रहा
8: है। एक बड़ा सी बोरी ले आना।
2: इतनी भी मिल जाती है। हाँ बोरी में कुछ डाल के मेरे लिए लेके आना, खजूरें, आबे जमजम,
8: खौल ले ले यार,
2: तस्बीहां, जाए नमाज वहां।
8: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका?
8: कौन बोल?
10: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: क्या हाल है आपका?
10: अरे वाजिद बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान कराची से।
2: अरे वाजिद क्या हाल है आपका?
8: हाल है भाई
10: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप
3: कैसे हो? खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत मुबारक वाजिद भाई।
8: भाई मुझे ये बताए
3: क्या चल रहा है,
8: आपने ईद पर गुटखा खाया था क्या?
10: नहीं भाई मैं गुटखा खाता नहीं।
8: ये बहुत अच्छा करते हैं, मैं भी नहीं खाता।
3: मैं खुद नहीं खाता, मैं ना पान वान खाता हूँ, ना सुपारी खाता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ।
2: इस आवाज का मतलब है कि तू जरूर खाता है।
3: नहीं खाता, अल्लाह की कसम नहीं खाता, अल्लाह पाक की कसम, मैं सही कह रहा हूँ।
2: ये तेरे अंदर टैलेंट है वैसे।
3: नहीं खाता, खाता
8: भाई। भाई ये बात बताइए,
10: मजा आ रहा है।
8: आपकी मेहरबानी, आपको अच्छा लग रहा है।
3: बिरयानी खाई आपने? ये खाई फिर आपने इन तीन दिनों में खाई बिरयानी?
8: आपने वो खाई है वो कराची में एक मिलती छोटी बड़ी बिरयानी? हेलो,
4: एक चिकन बिरयानी ना वो खाई है?
8: नहीं नहीं छोटी बड़ी बिरयानी खाई भी है, छोटी बड़ी बिरयानी भाई। हाँ कराची की बिरयानी है भाई, अब तो यूनिवर्सल हो गई, लार भी आ गई है।
3: मुझे तो मैंने छोटी और बड़ी बहन दोनों मिलके बनाती हैं, उसको छोटी बड़ी बिरयानी कहते हैं, वही होती है ना कि कोई और होती है? कोई और तो नहीं होती
8: भाई। भाई कुछ कहना चाहेंगे?
3: माजिद भाई को गाना सुना दे।
8: कितनी देर से कही तो जा रहे हो यार, अब और क्या कहना। हेलो
2: नाराज हो गए।
8: हेलो हेलो हेलो हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम।
3: कौन बात कर ले?
10: हेलो
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम सलाम सर, इकबाल बात कर रहा हूँ।
8: अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं?
10: वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप
8: कहाँ से कॉल किया आपने?
10: सर मैं लाहौर से कॉल किया।
8: क्या नाम है आपका?
10: सर मेरा नाम इकबाल है।
8: दोबारा बताइए।
10: इकबाल।
8: कौन सा बहाल?
10: सर माशाल्लाह आपके कल भी प्रोग्राम दोस्त में सुने हैं और आज भी सुन रहा हूँ, यकीन करें ऐसे ही लग रहा है कि मतलब मैं स्टेज ड्रामा सुन रहा हूँ।
8: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये आपने इन लोगों की तारीफ की है या इनकी बद तारीफ की?
10: नहीं नहीं बिल्कुल, जो गल है जो माहौल चल रहा है
3: उर्दू में बात कीजिएगा भाई जान, प्लीज उर्दू में बात कीजिएगा, पंजाबी में बात नहीं करनी है, हमने हमारे इंटरनेशनल प्रोग्राम है, सारे सूबों में सुना जा रहा है, आप उर्दू में अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप दूसरी अगर आप पंजाबी में बात करेंगे तो हो सकता है हमारे बहुत सारे लिसनर सुन ना पाए, उनको समझ ना आ सके, तो उर्दू में अगर आप बात करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इकबाल साहब आपका तो नाम है, इकबाल अलामा मोहम्मद इकबाल साहब के नाम से मंसूब है और वो तो उर्दू के तो फिर इतने जबरदस्त किस्म के शायर हैं, शायर मशरक भी उनको कहा जाता है, तो उर्दू में अगर आप बात करेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, हम आपके बड़े बहुत हम आपके शुक्रगुजार होंगे।
10: ओके ओके। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपने तो बहुत बड़े बंदे के साथ मेरा नाम मिला दिया।
3: नहीं आपका नाम है, यकीन जानिए कि आपका अपना नाम है, जाती नाम है, आपके शरारती कार्ड के ऊपर भी यही लिखा होगा।
2: आपको
10: बहुत बहुत ईद मुबारक साहब।
3: खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपको ईद का तीसरा दिन तो तकरीबन खत्म होने वाला है, 5 मिनट बाद अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक वो तीसरा दिन भी खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम चौथे दिन के अंदर शामिल हो जाएंगे जिसमें हम कुर्बानी नहीं कर सकते, सिर्फ तीसरे दिन तक कुर्बानी कर सकते हैं।
10: चौथे दिन में शामिल हो जाएंगे और छह महीने में शामिल हो जाएंगे।
3: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त
10: और सर माशाल्लाह बड़ा मजा आ रहा है आपका प्रोग्राम सुनने का, बंदा बोर नहीं होता है, बहुत मजा आ रहा है सुनने का। कल भी दोनों प्रोग्राम सुने हैं, 10 से 12 का और 12 से 2 का।
3: कोई गीत या कोई नगमा सुना दे जाते जाते।
10: सर मैं आपको क्या नगमा सुनाऊं, कौन सा नगमा?
3: कोई गीत, कोई नगमा, कोई खूबसूरत सी कोई सदा लगाइएगा, कोई सुर लगाइएगा, को अच्छा लगेगा।
10: शेर एक सुना सकता हूँ आपको?
3: जी जी यथा कीजिएगा।
10: जी सर कहता है तकसीम दिल के वास्ते वादा तो कीजिए।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
8: फिर बताइए।
10: तकसीम दिल के वास्ते वादा तो कीजिए, हमें ये मालूम है आपसे आया ना जाएगा।
3: ये क्या किए मोहतरम आपने,
8: ये कल वाली जो आवाज की तलब की थी ना आपने, आज इसमें लगाई है।
2: नहीं ये कुछ और है, ये कुछ और है
1: यार भाई,
2: हेलो वो ये वो है भेड़िया, भेड़ी की आवाज।
1: मैं डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ,
2: तुम्हारी आवाज से भी यही लग रहा था, उस तरह आवाज में बात कर रहा था।
8: मास्क मूवी में भी ऐसे ही करता है वो, मास्क मूवी में भी जब लड़की आती है ना वो उस लड़की तरह, इसी तरह की हरकतें करता है।
2: लड़की आती है तो ठीक है, कॉल लो यार अगली कॉल लो।
1: आप यकीन का मैसेज आया, कहती हैं आज मैं बहुत ही उदास हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है।
8: यार मतलब क्या चक्कर है, मतलब सारे जो सारे उदास हैं क्या? हाँ। आवाज सुन के उदासी छा जाती है, वल्लाह यकीन जानिए आपकी ये जो खंदा पिशानी है इसके ऊपर ये बल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं।
2: बैड़ी जी सकता हूँ आप, अब मैं जीना ही नहीं चाहता। ए मैं था।
8: हेलो السلام علیکم.
10: السلام
3: علیکم. السلام علیکم. السلام.
10: ہلو
8: آپ کا ریڈوا بول رہا ہے
10: جی.
3: اب تسی دسو. اب آپ بتائیں.
10: آپ بتائیں.
3: ہم ٹھیک ہیں آپ بتائیں.
10: جی ہم میں ٹھیک ہوں.
3: ابھی تک ٹھیک ہیں
10: جی الحمدللہ.
3: واہ اچھے آدمی لگ رہے ہیں آپ مجھے. کیا نام ہے آپ کا
10: جی؟ میرا نام کیا نام ہے میرا؟
3: سوچ کے بتائیے گا نیکسٹ ٹائم.
8: ہزار روپے انعام ملے گا نام بتانے پہ.
1: میرا نام بتا دینا.
10: نہیں آپ ہزار روپیہ پاس رکھ لیں اپنے. نام میں فری بتا دیتا ہوں.
8: بتائیے مغل صاحب نام بتائیے.
10: جی محمد عثمان.
8: بڑی گل ہے. پورا نام بتائیے.
10: پورا نام ہی بتایا میں نے. محمد عثمان ولد محمد مشتاق ولد جلال الدین ولد
8: شجرا پورا نہیں ہوا. چوتھا بتائیں گے تو خلدون کے مطابق شجرا نسب پورا ہوگا. چوتھا بھی بتائیں. منتل ہو چوتھا بھی دس رہے ہیں.
10: اچھا
8: نہیں چار چار اجداد کے نام بتائیں گے تو شجرا پورا تسلیم کیا جائے.
1: نہیں تو پھر وہ کس دائرے سے خارج ہو جائیں گے یہ بھی بتائیں.
10: یہ دائرہ کار سے نکل جائیں گے.
8: دائرہ کار میں رہ سکتے ہیں آپ؟
10: نہیں نہیں دائرہ کار میں نہیں نہ رہنا دائرہ بس میں رہنا.
8: یہ بھی اچھی بات ہے. اچھا
10: اچھا
1: ہاں اپنے بس میں رہنا چاہیے انسان.
8: عثمان صاحب کو بات بتائیں.
10: کس کو؟
8: او پائی جی کو گل کر لو ٹائم تھوڑا ہے.
10: اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا سر. آپ کا
1: کر بھی لو گل یار. کی ہے مسئلہ یار؟
10: سر بات اب کریں گے بات تو پھر آپ سنیں گے نا.
8: جی جی جی.
1: او بھائی میں نے سننی ہے آپ نے کرنی ہے.
10: اچھا اچھا تو آپ سنائیں گے تو ہم کریں گے نا.
1: چلو میں سنا دیتا ہوں پھر. کرو
10: کری کری نہیں سنا رہے.
1: کرو نا بات بھائی کرو کرو
10: کرو نا کرو نا کرو نا بات.
3: چلیے شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب. عثمان صاحب
1: ہاں
3: عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے.
10: جی بہت شکریہ آپ نے نام میرا بس میں ڈال دیا. کوئی بات نہیں
3: کوئی بات نہیں. آپ نے خود اپنا نام بڑا سوچ سمجھ کے لیا تھا. ساڈا تو پھر بننا ہے نا.
8: عثمان صاحب بڑے اچھے کالر ہیں جی. تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی. اکثر آتے ہیں اس طرح شغل ملا ہے بس.
10: نہیں نہیں کوئی بات نہیں سر. رات کو بھی میں نے آپ کا شو سنا ہے اور ابھی بھی سن رہا ہوں. تو یہ فنی موڈ ہونا چاہیے کبھی کبھی ہونا چاہیے.
8: ہم ایسا شو کرتے نہیں ہوتے یقین کریں.
10: جی جی جی کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کی فیس کے اوپر تھوڑی سی وہ گلو آ جاتا ہے ان کے.
8: بالکل صحیح ہو گیا. تھینک یو مچ.
10: گلو جیلس ہونے والے جتنے مرضی جیلس ہو انجوائے کرنا چاہیے.
3: بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ کال.
10: ضیاء بھائی اور رحمان بھائی اور ڈاکٹر بھائی سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور پاکستان
8: زندہ باد. وعلیکم السلام. بہت شکریہ.

0: फैमिली के साथ दे दी और मैंने रख दी और मैं सोया रहा उसके बाद।
1: तो ये जो तो कहते हैं कि ये ज्यादा जिम्मेदारी के सहयोग तो नहीं चलनी चाहिए, वरना वो दोस्त पंद्रह बीच में कुछ ना कुछ गाड़ी देते हैं, काम गाड़ी देते हैं।
0: नहीं, उनको पैसे अच्छे दें तो फिर ठीक करते हैं सब कुछ।
1: नहीं, फिर तो मेरे राय तो काम करवाया तो फिर वो काम जो बिल्कुल जिम्मेदारी से करते हैं।
0: ये बात सही है
2: यार। आपको और कोई काम नहीं हो तो रात के 12:30 1 हो गए बस, ठीक है। और कोई चाय शाय नहीं बनानी
1: है? नहीं, क्योंकि जब फेवरेट आदमी आए हो ना तो बिल्कुल दिल नहीं आती है। रेडियो जो है ना मेरा स्कूल है, इसी रेडियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है।
2: क्योंकि अच्छी चीज क्या सिखाई है रेडियो ने आप?
1: रेडियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं हैरान रहती हूँ इस रेडियो से। यह होता है कभी इंसान दुखी होते हैं तो दुखी दूसरी चेहरे में मुस्कुराहट पर खेलना सिखाया है। और जो मतलब जो इंसान परेशान होते हैं उसे किसी भी आवाज सुन के मशवरा भी मिल जाता है। आप लोग इतना अच्छा शो करते हैं कि हर दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट फेर देते हैं।
0: बस सारे मशवरों पर अमल नहीं कर रहा,
1: क्योंकि भाई मैं ऐसी थी, यानी मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है,
2: यानी
1: मतलब 5 महीने हो चुके हैं इस बात को। मैं उसके बाद काफी बिखर चुकी थी, टूटी हुई थी, क्योंकि इसी रेडियो ने मुझे फिर से दोबारा मुझे जिंदा किया, यानी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे फेर दिया।
0: चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इस रेडियो को उसका क्रेडिट दे रही हैं। और वैसे भी हमारी दुआ है कि रब्ताल आपकी जिंदगी में, आपकी पूरी फैमिली की जिंदगी में आसानी रखे और जो कमी जो
1: आपके बाबा बिल्कुल ठीक है आप?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर है, बेहतर है पहले से। और आपकी दुआओं
1: की आपके बाबा का सलामत जो मैंने देखा है ना कि मेरे बाबा जो है पता चलता है इंसान को कि जब कोई माँ का या बाप का सलामत तभी ही पता चलता है कि अपने कौन है और गैर कौन है। वो इंसान के काम आता है, कोई भी काम नहीं आता जो अपने वो से छोड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको नींद ना आई तो दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: चलिए ठीक है।

0: अनिला बात कर रही हूँ लाहौर से।
1: हाँ, अब आप कहें जिशान भाई कैसे हैं?
0: हाँ जिशान भाई कैसे हैं?
2: जिशान बताओ।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन
0: जिशान अवान,
1: अल्लाह
2: कैसी हैं आप? ठीक हैं? मिजाज बता है, ईद मुबारक।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैर मुबारक। आपका तो शो यहाँ आता ही है, लेकिन मैं जब कभी कॉल करती हूँ तो मैं आपके लिए मैसेज जरूर देती हूँ।
2: बहुत शुक्रिया जी,
0: आपके लिए दुआ जरूर कहती हूँ।
2: थैंक यू सो मच।
0: आप याद करते हैं, आपके शो तो आ नहीं रहे, लेकिन आप मंगल को करते हैं 10 से 12
2: जी। लेकिन ये टाइसन कब आया आपकी जिंदगी में?
3: अनिला टाइसन आपने रखा हुआ?
0: जी जी टाइसन मेरे पास है,
1: जर्मन शेफर्ड।
0: जी जी।
2: और ये नाम किसने रखा है?
0: ये मैंने ही रखा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: ये बच्चे कब देगा?
0: अभी तो वैसे हमने इसको दूर ही रखा है इस काम से।
1: क्योंकि
0: फिर सारे तो निकल जाएगा।
1: आपके हाथों से निकल जाएगा।
2: आप जा रहे लाहौर इसी काम के लिए तो मैं भी चले जाऊंगा।
0: बात कर ली
1: उसने, असल में वो आपको लग रहा है उसने लिजर्ट देखी है, उसने कुछ और देखा होगा, इसलिए वो बेचारा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप समझ नहीं रहे। मतलब उसको भूख लग रही होगी ना, भूख लग रही होगी।
4: जिशान इमोशनल हो गया इस बात
0: पे। अच्छा
1: वैसे जब भी आपने सोचा ना, अच्छा जब भी आपने सोचा ना कि आप इसकी अफजाइश नस्ल करेंगी तो एक पपी हमारे लिए रखिएगा।
2: एक नहीं,
1: एक जिशान भाई के लिए दो रखिएगा, ठीक है? पावे होवणी दो सानू दे देना, आप तुसी वेले बैठे रहना।
4: लाहौर आ रहा है वैसे भी जिशान।
1: हां मैं 13 तारीख को ही
4: बैठा जिशान, 13 तारीख को लाहौर आ रहा है तो उसके हाथ फिर पपी देंगे।
2: अगर उस तो उस मुकाम में आ रही है 13 तारीख तक
0: मेरा
1: शो आता लाहौर में, मेरे
0: शो में मैं भाई वैसे कॉल कर दूंगी रेंडमली।
1: डन हो गया,
4: किसकी बात है?
1: उसकी बात हो
0: रही है,
2: आ रहा हूँ।
1: मतलब आपके जिसके भी शो पे कॉल आए मुझे बता देना कि टाइसन का पपी होगा।
2: हाँ, रेडी है,
1: रेडी है,
2: रेडी टू
1: टाइसन, रेडी है।
0: ठीक हो गया।
1: नुमान अब्बासी नहीं है, यूसुफ भाई है।
4: नुमान अब्बासी आज मैनेज नहीं कर पाए। एक और बंदा था भाग गया है, मौके मोबाइल उसने छोड़ के भाग गया, अपना सामान भी छोड़ के भाग गया।
1: जिसने कहने जुत क्या
0: छोड़ के भाग गया, मैं बैठता, मैंने आके इतना भी मेरे दिमाग तो नहीं कर
1: देता। अनिला कुछ
0: अच्छा लग रहा है, अच्छी रौनक लगी है,
1: सुनाएंगी या बस
4: सुन पूछ लो ना
1: कुछ? आप सुनाएंगी शायरी वगैरह या बस फिर फ्री करेंगी?
0: शायरी सुनाओ।
4: बेवजन शायरी आई ढूंढते फिर
1: हम ना, थोड़ा सा बेवजन, थोड़ा सा बेवजन सुनाया
0: मैं करती ना, वो अंदर की ही हो रही होती है, वो ठीक कर दे।
1: हां जी
4: अच्छा सुनाए जी सुनाए।
0: चलिए आते बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत पढ़ते हैं तो मैं उन्हें अक्सर रिपीट करती हूँ।
1: आते भी किसने नोचा?
0: खामोश नजर,
4: खामोश
2: खामोश
4: कोई बात तो कर, दिल दुखता है।
0: खामोश नजर कोई बात तो कर, दिल दुखता है। तू मेरे दिल पे हाथ तो रख,
1: दिल दुखता
0: है। तू मेरे दिल पे हाथ तो रख, मैं तेरे हाथ पे दिल रख दू। दिल दर्द भरा जो इसको छुए ये उसको मिले, दिल दर्द भरा जो इसको छुए ये उसको मिले, एक लफ्ज मोहब्बत बोल जरा,
4: मैं सारे लफ्ज तुझे दे दूं,
0: मैं सारे लफ्ज तुझे दे दूं।
4: ओए होए
0: दिल दर्द भरा को आप सुधर, तू मेरी खाब पे आंख तो धर, तू मेरे खाब पे आंख तो धर, मैं तेरी आंख में खाब भर। खामोश मोहब्बत
4: बात तो कर, बहुत अच्छा जी जी, बिल्कुल ठीक पढ़ी आपने, बिल्कुल ठीक।
0: थैंक यू जी, सबके लिए बहुत ही दुआएं शान है, अगले भी बहुत ही शान और आते रहो, ये सब आप सबके लिए बहुत ही दुआएं। थैंक यू सो मच
1: आपने गौर किया, मैंने कहा आते बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, दुआएं जिशान वान भाई आपके लिए, दुआएं यूसुफ और जिशान आपके लिए।
4: उन्होंने
1: बारी बारी बंदे बाहर जा रहे हैं, 20 मिनट बाद वापस आ रहे हैं,
4: चक्कर है।

0: आपने कहा कि नहीं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने एक वीडियो भी देखी है कल, एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें एक बैल जो है वो एक पार्किंग लॉट के अंदर भाग रहा होता है और उसको इन्हें क्लाशन की गोलियों के साथ मार के उसको कंट्रोल किया था।
2: सर,
1: ऐसा था। यस, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। हाँ, कि कसाब के होते हुए भी मसला हो जाता है, ठीक है। कसाब भी आपने जब कभी को बुलाना है तो वो भी आपने तजुर्बाकार बुलाना है। क्लाशन कोफ रखनी है, बस क्लाशन कोफ आपने जरूर रखनी है। मेरा खुराना खासा बिल्कुल बिफर गया तो आपके पास क्लाशन कोफ हो, उसको कंट्रोल कर सके।
0: सबसे पहले एहतियात तो ये करनी है, आपने सूटेड वूटेड होके नहीं जाना,
2: चश्मा पहन के नहीं।
3: मेन जो सबसे चीज है ना, कि उसमें जब आप उसको बांधते हैं ना, या तो बिल्कुल उसको खुला ना छोड़े किसी ग्राउंड वगैरह में, जितना ओपनली कम से कम जब उसको बांधते हैं, उसकी गर्दन थोड़ी सी जहाँ पे आपने बांधा उसको क्लोज रखे, ज्यादा उसको मतलब स्पेस ना दे।
0: इसको बताइए, खुद करता है, मैं कुछ सही बता दूं।
3: इतनी लंबी बीच में रस्सी है आपकी।
2: और दूसरा जितना भी जानवर केपीके से अगर आप मंगवाते हैं ना, उसके वो नाक में रस्सी नहीं होती। तो अगर आप बैल लेके आए ना, तो शुरू में उसकी टांग के साथ ही रस्सी बांध दें।
3: अच्छा, सबसे पहले जो है ना, उसकी अगली दोनों टांग है उसको बांधना चाहिए, बाकी पीछे वाली जो टांग
2: है वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
4: पीछे वाली टांग के इंपॉर्टेंट नहीं है,
2: अगली दो टांगे बांधो और शुरू हो जाओ
3: अगली दोनों। ये मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि समटाइम होता है अगर आप करते हैं यहाँ पे, मतलब स्पेस अगर उसने आपने यहाँ पे उसको बांधा है, तो ऐसी जगह आए यहाँ पे उसका जो गले की जो रस्सी, उसको नजदीक करके बांधो, ज्यादा उसको स्पेस ना दें ताकि वो घूम फिर ना सके।
1: अच्छा, उससे भी कुछ लोग तो इतने ज्यादा माहिर होते हैं, वो दो उंगलियों से गिरा देते हैं ऐसे करके, वो क्या होता है, ऐसे नाक में उंगली डालते हैं और कसाब गिरा देते हैं, ऐसे डालते हैं और गिरा देते हैं,
3: फिर वो जो गर्दन का मनका होता है ना, वो टूट जाता है।
2: हाँ, वो फिर कुर्बानी के लायक नहीं रहेगा।
1: अच्छा अच्छा, मतलब वो वाली प्रैक्टिस नहीं करनी आपने, रस्सी बांध के आपने जानवर को गिराना है।
0: जला लिया
1: तुमने? जलाना अच्छा आता है मुझे। हिस्सेदार जो था ना, हाँ हिस्सेदार जो था ना, वो थोड़ी देर के लिए बैठा, ये सब हिस्सेदार थोड़ी देर के लिए बैठा साइड में और फिर वो शामिल हो गए। लेकिन आपको सही तरह लेना नहीं आता, नीचे वाले बटन से लिया करें आप।
0: ओके,
1: निशान भाई, ये सो डाल।
4: नहीं, मैं एक्चुअली एंजॉयिंग एवरी मोमेंट नाउ, तो मैं चाह रहा हूं कि डिस्टर्ब ना।
1: लग तो नहीं रहा कि आप एंजॉय कर रहे हैं।
4: मैं सर इतना एंजॉय कर,
2: कुछ एनर्जी बूस्टर टाइप होना चाहिए कि जरा।
1: हां, गोली गोली है मेरे पास, लेकिन वो जी सामने से।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन कहां से?
5: जी, मैं नासिर
2: चाचा
5: बोल रहा हूँ,
2: जिशान
5: नासिर साहब से बात
1: करवा। नासिर साहब, नासिर चाचा, जिशान नासिर साहब के रोजे आज मैं बात नहीं करना
0: चाहता।
5: जी वालेकुम सलाम सर, जी
0: आप खैर मुबारक सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: और आने वाली ईद मुबारक।
0: क्यों आप बच जाएंगे? मुबारक करे अल्लाह।
2: आने वाली क्या है?
0: जी गदीर, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, बल्कि सभी को मुबारक,
2: सबको
0: मुबारक हो जी,
5: इंशाल्लाह
0: ठीक है। साढ़े पड़ोसी सुने ठीक है, इतना बहुत है कि आप घर का नंबर बताएं। हाँ चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया।
2: पता चले उसी बेकरी दुकान के होते हैं जिधर तुम जाते हो, मैं जा रहा हूँ मिलने।
0: हाँ वाकई, ओके अल्लाह हाफिज।
2: क्या
0: कॉल ले रहे हैं ना, कह रहे बंद कहाँ से करें, ये सिखा रहे थे?
6: हाँ जी, नहीं ये इसने दोबारा उठा लिया कॉल।
2: हेलो
7: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: अभी भी साल हो गए रेडियो करते, ये नहीं पता।
1: वालेकुम अस्सलाम
2: यार, एक थे
1: जी जनाब, कौन साहब है कहाँ से? जी जी जनाब, सुन रहे हैं आपको, कौन साहब है कहाँ से?
7: अच्छा, सब भाई को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
2: सब को
0: वालेकुम सलाम।
7: अच्छा सर, जान नासिर भाई को भी और शान भाई भी आए हुए हैं माशाल्लाह।
2: जी जी जी,
7: खुरम भाई भी आए हैं,
2: यूसुफ भी
7: हैं, वेलकम कहते हैं।

0: All right, guys, welcome back once again. एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको. This is Eid special transmission 2026. ईद उल अज़हा तीसरा दिन. स्टूडियोज में मौजूद आपके फेवरेट आर्जेस. मेरा नाम ज़िशान नासिर है और स्टूडियोज में मौजूद हैं आतिर अली सैयद, ज़िशान अवान, खुर्रम बेग, मोहम्मद यूसुफ एंड वी आर हियर फॉर द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ईद 2026. क्या कह रहे हैं आतिर?
1: वो पीछे पीछे होता जा रहा है, दीवार से ही बाहर निकलेगा अब क्या?
2: क्यों नहीं है? दुनिया पिला रही है,
1: कोई भी
3: ओपन है, सब
0: दुनिया पिला रही है. आप कोड वर्ड नहीं समझ रहे.
1: आप असल बात बताओ बीच में
0: से. आप कोड वर्ड नहीं समझ रहे.
2: ये है ना वो जो मैंने एक बार तस्वीर भेजी थी ग्रुप में, ये पंप के पास जो नहीं शॉप खोली है.
1: कॉफी तो पी लेते हैं. मैं पी के यार,
3: मैं पी के
0: कह रहे हैं कि पिलाने वाली वो मतलब वो अच्छा
2: वो कौन
0: जी? अस्सलाम वालेकुम कॉलर.
3: इस बार आतिर भाई ने स्पेशली मना भी किया कि आपने शो नहीं सुनना.
0: वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? बहुत नेक लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, सीधा जन्नत तक जाना. सर कैसे हैं आप? ठीक हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह. जान भाई आप ठीक हैं? खैरियत से हैं?
0: हाँ जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह.
4: आतिर साहब आप भी ठीक हैं?
2: जी अल्लाह का करम.
4: ठीक है आलम साहब भी ठीक हैं?
3: सब ठीक है,
4: सब ठीक लग रहे हैं.
3: जी जी जी.
4: हेलो.
2: जी जी जी हुजूर सब ठीक है.
4: मैं ये देखना चाह रहा था कि सब ठीक भी हैं कि नहीं. आप सब खामोश हो गए.
0: हम असल में आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना कि आप बात करें और हम सुने.
4: आपका
0: नाम क्या
4: है? अच्छी बात करेंगे आपसे.
0: आपका नाम क्या है? नाम
2: कह रहे हैं अभी तो लचक मन लगाया हुआ है. अच्छी बात करेंगे बाद में.
4: एक हिस्सा सा लिया शायरी पे, उससे बड़ी लंबी
3: बात. हमीद गुल साहब है मेरे
0: ख्याल. हमीद गुल साहब
4: जी जी.
0: अच्छा अच्छा अच्छा. मैं इसलिए नाम.
2: अच्छा शायरी करते हैं आप माशाल्लाह.
0: ये अमीर गुल साहब करते
2: हैं. नहीं वो कह रहे हैं आप, आपका भी कह रहे हैं.
0: नहीं नहीं मैं तो जी अमीर साहब.
4: मैं तो जी सर मैं ये कह रहा हूँ जिशान साहब, कल शायरी पे बड़ी खूबसूरत बात की आतिर साहब ने और आपने, तो मैं चाह नहीं रहा था कि तीसरी दफा मेरी कॉल लगे.
0: नहीं सही चाह.
4: मैं करना भी नहीं चाह रहा था. मैंने कहा जिस दिन आप अपना शो करेंगे उस दिन शायरी पे मैं बात करूंगा आपसे,
2: बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं शायरी.
4: आपके प्रोग्राम में बात
2: समझ आ रही
0: है? आतिर भाई समझ रहे हैं आप?
1: वो ज़िशान भाई बोल रहे
2: हैं. वो आप क्या कह रहे हैं?
0: 11 साल से रेडियो कर रहे
2: हैं. हाँ लेकिन आप मेरा वो
0: बताऊंगा
2: कि मैं आपको बताऊंगा शेर कैसे पढ़ते हैं.
1: नहीं मुझे नहीं कह रहे.
4: मैंने ये नहीं कहा कि शेर कैसे पढ़ते हैं. देखें आप, मैं ये कह रहा हूँ मैं शायरी पे बात करूंगा.
0: वो यही कह रहे हैं ना कि आप बेशक 11 साल से रेडियो करें, मैं आपको बताऊंगा शायरी पे कैसे बात करूंगा. 2026 से कितने हो गए?
2: 16 से 10 साल.
1: लेकिन वो आप कॉल करने की बात कर रहे हैं.
0: लेकिन वो जाहिर है वो आपने वो कहावत ही सुनी कि आखा तीन हूँ तो कहना नू नू.
4: क्या बात की आपने?
0: मैं कह रहा था अमीर गुल साहब कहाँ से है, कहाँ से आप?
4: मैं
0: राहुल
4: से.
0: माशाल्लाह चले सर.
2: लबो लहजा आपका वहाँ कराची वाला है
0: और नाम आपका पिंडी वाला है.
4: तो मैं पठान.
2: अच्छा अच्छा.
4: आप यहीं मैंने पढ़ा, यहीं आकर लोगों से सुन
0: सुन
4: शायरी मेरा शौक है.
2: अच्छा पसंदीदा शेर सुना दे अपना.
4: उल्टा सीधा है मेरे जहन में, कह देता हूँ कभी कभी खुर्रम साहब के साथ गाता
2: हूँ. पसंदीदा शेर सुना.
0: पसंदीदा शेर सर सुना दे अपना. गुल साहब वो ज़िशान भी कह रहे हैं कोई पसंदीदा शेर अगर आपका है तो सुनाए ना. मतलब दो जो लाइनों वाला क्या कहते हैं उसको?
4: दो लाइनों में आपको इतनी अच्छी बात कर दूंगा. आपने कहा वो भी मुहावरे इस्तेमाल किया, मैंने एक मुहावरे को शेर में बांधा.
0: वाह खोले
4: कर रहा हूँ. देखिए इस मुहावरे को के वो मुझसे हाथ करना चाहता है.
2: क्या करना चाहता है?
0: हाथ करना चाहता
4: है. हाथ करना मुहावरा है ना?
0: जी जी जी जी. हम सर इतने
2: दो हाथ करना
0: नहीं जितना आप समझ रहे हैं. हमें बिल्कुल समझ रहे हैं.
4: वो मुझसे हाथ करना चाहता है. जान साहब आपकी नजर काट रहा हूँ दूसरा मिसरा के. वो मुझसे हाथ करना चाहता है, मैं समझा बात करना चाहता है.
2: अच्छा अच्छा मतलब आप जो है
0: ये वो सालगिरह
2: वाले. हाँ समझ गया मैं.
0: क्या बात है सर. वो मुझसे हाथ करना चाहता है, मैं समझा बात करना चाहता है.
4: मैं समझा बात करना चाहता है.
0: वाह वाह वाह.
4: अगर अगर मैं आतिर साहब की नजर उनके आपकी नजर एक और शेर
2: आतिर
1: नहीं जिशान को कह रहे हैं,
2: मैंने आपको कहा है आतिर
1: किसकी नजर कर रहे हैं,
2: आतिर आतिर साहब की,
4: आप सबकी नजर है,
1: आप सबकी नजर है
4: कि तेरे सब नाज उठा लूंगा मैं,
0: हाय हाय
4: तू मेरे मुझसे कोई बात तो कर,
0: हाय करिए सुना सुना है,
4: मैं ये चाह रहा हूं कल एक बहस हुई शायरी पे कि शायरी बेवजन, शायरी वो बेवजन नहीं है,
2: नहीं है भाई, नहीं है भाई बेवजन नहीं है,
4: आप ये कह सकते हैं
2: माफी मांगी है, मैं बात बहुत आगे
4: जाएगी, ये एक्सेप्ट कर रहा था कि आखिर साहब इसका जवाब देंगे, मैं ये सोच रहा था शायरी के चार किस्मों की शायरी होती है,
1: जी जी बताइए,
4: शायरी जो हो रही है वो सतही शायरी हो रही है,
0: नहीं सर गुल साहब मेरा सवाल है कि मतलब आप कह रहे हैं कि तहजीब हाफिज साहब मतलब अच्छे अशार हैं उनके, है ना, आप ये कह रहे हैं,
4: बहुत अच्छे अशार
2: हैं, कोई सुनाए उनका कोई अच्छा शेर,
0: एक अच्छा सा शेर तो सुनाया हमें सर,
4: तहजीब हाफिज का, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया,
0: वाह
4: इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया,
0: वाह एक और बड़ा मजे का जो आपने शेर सुना है, इसमें एक बड़ा मजे का है, वो कहता है कि मजलिस इश्क में नशिस्ते नहीं होती मुकर्रर, जो जहाँ बैठ गया सो बैठ गया, कुछ इस तरह कुछ
4: वो था कि महफिल जाना में नशिस्ते नहीं होती मखसूस, जो एक बार कहीं बैठ गया कुछ इस तरह का शेर था उनका तहजीब हाफिज के इसी गजल का, बात यह है कि आप जब सतही शायरी है हम भी वो देखते हैं, शायद हमने बड़ी मार खाई शायरी में,
0: आपकी बनती
4: भी 10 साल या 12 साल बाद जाके हमें आपके एक बात से मैं बड़ा मुत्तफिक था जिशान साहब,
0: बड़ी मेहरबानी सर,
4: मैं आपसे एक बात बताऊँ, मैं जो बात दाद के काबिल हो मैं वो जरूर दूंगा, वो जिशान साहब हो खुरम साहब हो, कि काफिया पे हमारी शायरी नहीं है, ये याद रखिएगा,
2: काफिया शायरी नहीं है जी,
4: काफिया पैमाई शायद नहीं है, मतलब जैसे मैं आपको शेर सुनाता हूँ मुनव्वर राणा का,
2: वो अच्छा शायर,
4: बड़े बड़े को किया है, बड़ों बड़ों को किया है खराब हमने ए राणा, हमारे लहजे में उस्ताद शेर कहने लगे तो ये जहाँ पे जो उस्ताद है ये काफी की मजबूरी थी, और दूसरी तरफ इशारा ये था कि उस्तादाने अदब वो लोग जो अपने आप को बड़ा समझने लगे अदब में, यानी अगर इस बात को मैं दूसरी तरह वजाहत करूं तो ये इस तरह होगा कि मेरा अपना शेर है कि दो चार शेर उनको, आखिर भाई आप मजा लीजिए, दो चार शेर उनको क्या याद होगा,
0: हम चले जाएं
1: जी जी,
4: दो चार शेर उनको
2: क्या याद होंगे,
4: उनको लगा कि वो भी उस्ताद हो गए, मतलब शायरी जो है
2: मजा लिया हमें
4: करते हैं शायरी,
0: आतिर भाई मजा आया, पहले ये तो बताएं
2: कोई जवाब नहीं दे रहे आप
0: यार, गुल भाई साड़ी भी सुन लाई यार,
2: नहीं सुन,
0: अच्छा गुल भाई बात तो सुने, गुल साहब बात
4: करेंगे, सुने मेरी बात, सुने
0: दो मिनट ना यार, गुल साहब
2: माइक बंद तो नहीं आपका,
0: नहीं ठीक है, यहाँ से तो आवाज आ रही
4: है, तो लोगों ने मीर में जो गलतियाँ निकालना शुरू कर दी और गालिब में भी,
0: अच्छा गुल साहब
4: वो गलतियाँ पता है
2: आपने क्यों, बस सॉरी कह रहा हूँ, क्यों निकाली तहजीब हाफिज
4: साहब, ये लगाई कि इसमें गुंजाइश है,
0: गुल साहब सुने तो सही, सर साड़ी भी सुन लो ना हमारी, सुने तो सही, गुल साहब काट दी कॉल यार, अभी तो मजा आना था, अभी आप कह रहे हैं आप जुगल लगा दे, मैंने कसम से टेक ऑफ करना था अभी यहाँ से, बहुत जस आनी थी, छोड़े यार, हाँ जी जी खुरम भाई आप बताएं
2: मुझे
0: क्या हो रहा है,
2: ये जो आप शायरी की बातें करते हैं मुझे कुछ शायरी से इतना खास कुछ शगफ नहीं,
0: शगफ नहीं,
1: उन्होंने चार दफा कॉल में आपका नाम लिया,
2: वो तो उनको उनके मेरी मोहब्बत है, बस उनके साथ जब भी
0: वो कह रहे हैं कि मैं
2: गुल साहब से
0: कह रहे हैं कि
2: वो गुल साहब जब भी चाहत से मोहब्बत से सुनाते हैं मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई शायरी खास पसंद नहीं, बस वो ऐसे ही कभी कभार हो जाता
0: है, इनको कोई गाना सुना ये सुन लेते, कोई शायरी सुना ये सुन लेते,
2: बस किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, दिल रखना चाहिए,
0: वो कह रहे हैं ना मुझे, वो कह रहे हैं मुझे कोई शायरी भी सुना है मैं सुन लेता
2: हूँ, अभी देखिए आते भी सुबह भी सुना रहे हैं,
0: सुन रहा हूँ
1: सुबह से सुना क्या सुनाया भाई सुबह से,
2: और मुझसे अगर देखिए मुझसे सुनना चाह रहे हैं आतिर भैया आज, तो मैं इनको सुनाई जा रहा हूँ, 3 दफा किस्सा सुनाया, मैं सुनाने को तैयार था, सुनाया उनको, उनको भी सुनाया,
0: नहीं
2: सुनाया, अच्छा ऐसा हुआ जी, ऐसा हुआ मुझसे भाई,
0: लेकिन ये जो भाई आए थे अभी, बस मेरी भी इसमें एक राय है, राय क्या है, बस एक
2: इनपुट है कि देखें जब आप अपना व्यू पॉइंट देते हैं ना, तो आपने इस तरह से देना है, ये एक सलीका है, एक तरीका है कि आपने इस नियत से नहीं देना कि मैं सबकत ले जाऊं। आपने इस तरह से देना है कि आप के पास जो इन्फॉर्मेशन है जस्ट शेयरिंग हो रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो मुझे इनकी गुफ्तगू में लगी ना, ये सबकत लेके जाना चाह रहे थे और ये मेरे ख्याल से एक मुनासिब तरीका नहीं है।
0: गुफ्तगू के दौरान ये मैंने कहीं पढ़ा भी था और मैं इस पे बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि गुफ्तगू के दौरान अगर दूसरा शख्स आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा तो वो आखिरी हद तक खाहिफ है और डरा हुआ है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा पॉइंट उसके सामने रखेंगे जिसका जवाब उसको नहीं आता।
2: बिल्कुल।
0: सो ये कभी भी गुफ्तगू मजा ही तब आता है जब आप हार और जीत से आगे की बात।
2: बिल्कुल।
0: एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए।
1: माइक तो क्रिएट कर
0: यार, वो ज्यादती की बात है कि उन्होंने चौथी दफा किस्सा सुनाना शुरू किया।
1: फिर अपना मोबाइल
0: जी खुरम भाई
2: जी
0: जी यूसफ भाई, हाँ वो आप गए और वहां से कॉन्टेक्ट बताए
2: कहाँ से
1: कॉन्टेक्ट
2: में मिस करना। अच्छा जी यूसफ भाई, आप आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं?
5: वो जो ये कह रहे हैं तीन बार सुना चुके हैं और आप
2: तो किस्सा बहुत मुख्तसर है। मैं कुर्बानी के लिए गया था, सूटेड बूटेड होकर गया था और वहाँ एक साहब थे जिन्होंने मुझे देखा और बोला कि हाँ जी भाई
1: निपरेदा
2: नहीं, वो तो बाद में आना यार। अच्छा। आखिर भाई आप भूल जाते हैं, आपको भूलने की बीमारी है। तो उनने कहा जी कि आप जो है वो आप, मैंने कहा जी वो साथ एक साथ, उन्होंने कहा जी ये भी हिस्सेदार है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आप भी हैं? मैंने कहा जी जी मैं इधर ही हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि प्रेदा प्रेदा छुरी छोड़ो, हाँ छोड़ के। तो वो साइड में बाड़ी कुर्सी पे कहते हम भी थके हुए, हम भी काम नहीं करते। इतना सा किस्सा था, हाँ सूखा सा फीका सा। आतुर भी पता नहीं इसमें क्या मजा आ रहा है, क्यों इतनी फीकी फीकी बातें सुन के खुश होते हैं।
1: ये कवर कर ली इसने बात सारी की सारी, और वो भी करवाई हमने। चौथी दफा जो किस्सा हुआ ना, मैं तो बताता हूँ। इन्होंने पूछा कि आपने क्या कुर्बानी की है और उसमें से कितना गोश्त निकला जिशान से। फिर इन्होंने ये सवाल मुझसे किया, तो मैंने इनको बताया कि हमारा एक दोस्त था, वो कहता था मैं तुम्हारी तस्वीर खींचू, ठीक है। तो जब आप उसकी तस्वीर खींच लेते तो कहता था मेरी खींचो, फिर वो अपनी 25-30 खिंचवाता था, ठीक है। तो ये वो सवाल करते थे कि फिर ये मुझसे सवाल करे और मैं इनको बताऊं कि मेरे मैंने क्या सुबह किया, कैसे किया, एक मिनट ना और उसमें कितना गोश्त है। तो इन्होंने फिर खुद ही बताना शुरू कर दिया।
2: मैंने गोश्त के बारे में तस्करा नहीं किया, पूरे वीडियो की रिकॉर्डिंग उठा के देख लिया मैंने, गोश्त के तस्करा नहीं किया। मैंने तो ये तस्करा किया कि बंदा खफा होकर बैठ गया। दूसरी बात ये कि काम करने वाले एक दो ही होते हैं, बाकी बस ऐसे ही होते हैं सूटेड बूटेड वाले, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ काम करने वाले एक दो ही होंगे।
1: ये चाह रहे थे कि उसमें सूटेड बूटेड वाला मैं था। अगली बात क्या है ना, उसके बाद इन्होंने चार दफा कहा कि मेरी उंगलियां कटी हुई है।
2: बिरयानी की बात चली थी तो उन्होंने कहा मेरे
0: उंगलियां,
2: मैंने कटी होने की बात नहीं की थी, जख्मी मैंने ये बात भी नहीं की थी, मैंने उंगलियों की बात की,
3: मेरी ठीक उंगलियां ठीक नहीं है,
2: उंगलियां ठीक नहीं है, तो मैं भी इस बात पे कायम हूँ। उंगलियां थोड़ी मोटी है, चावल गिर जाते हैं।
1: अच्छा
5: मुझे ये था कि ज़िबा भी मैंने खुद किया, वही बात है काम करने वाले दो लोग होते हैं, खाल भी खुद उतारी, कटिंग भी खुद की, जो आता था ना अच्छा जी कर रहे हैं, थैंक यू बहुत अच्छे, बस
1: इसलिए आप थके हुए बहुत ज्यादा,
5: खुद ही सारा
1: पहले दिन।
2: तो क्या ये सब भाई क्या जब किया
5: उठने का दिल भी नहीं कर रहा था, आज भी जब शाम भाई ने फोन किया तो उसके बाद ही मैं घर में ही लेटा रहा, हिम्मत ही नहीं आ, मतलब इतने पूरा जिस्म इस वक्त ना
2: छल्ली छल्ली है,
5: हिल नहीं हो रहा था।
2: आप पता क्या करें,
5: और अभी जहाँ पे शिफ्ट हुआ ना वो
2: आप गाना सुन
5: लो, जैसे सुबह की मुझसे पहले पूरे मोहल्ले है ना उस पूरी गली में सबने जगह कर लिया, और उसी से मतलब वो ड्रेनिंग पाइप में से जो है वो सारा उसका फोन वगैरह जा रहा है, जब मैं करने लगा
2: इसमें पानी ज्यादा तो
1: नालियां बंद हो जाएगी। फिर आपने उसमें पानी भी लगाते रहे। हेलो
2: جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو
1: منہ پہ لگائے فون یار
6: اکیلے جا رہے ہیں.
2: ہیلو کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ آتے بھی دوسری فون لے رہے. السلام علیکم
1: یار. وہ کہہ رہے ہیں آپ آئے ہیں سارے میسج آ رہے ہیں.
2: ہیلو میں تو کچھ میسج نہیں.
1: ہیلو
7: ہیلو ایشان ناصر کو دو جی.
2: ایشان ناصر لیں جی.
1: السلام علیکم
7: جی. ایشان ناصر کو دو یار سے آتے بولی دیکھو وہاں سے آپ نے صحیح نہیں کیا.
1: نہیں
2: آتر بھائی آپ نے صحیح نہیں کیا.
1: انہوں نے تیسری دفعہ آتر بولا میں نے کال کر دیا.
2: اچھا مطلب نام صحیح نہیں لیں گے تو
1: ادھر نہیں. وہ پہلے بتا کے یار
2: کدھر
1: کر کے جاؤ نا پھر. اب یہاں سے وہاں تک بھی نہیں جا رہے ہو.
2: یوسف کدھر
1: جا رہے
2: جی بھائی؟ ذیشان بھائی کو بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں.
1: اگر تو بیٹھنا ہے پھر اٹھتے ہیں ادر وائز.
6: اس سے بولو گے اس طرف دل ہوتا ہے.
2: ہیلو
1: نہیں بیٹھیں گے.
2: جناب ذیشان بھائی گانا چلا رہے ہیں آپس میں پھر آپ سارے مشورہ کر لیں. آن ایئر جا رہے ہیں. گانا کیوں چلانا ہے؟
6: آپ کی جرنی میں کتنا ایکسپیرینس تھا؟
2: والا
6: ادھر آگے کرو.

0: लूटा।
1: वाह वाह, ये जो लूटा है ना ये मजे का था। सारे पैसे इसके लूटा जो था इसके सारे पैसे इसके हैं ऐसे है ना, लूटा। ओके जी खुरम भाई, छोड़े गाने जानो का, हमने अब गाने थोड़ी प्ले करने हैं, अभी गपशप लगा रहे हैं यार।
2: ये जो आपने गाना अभी कहा था ना कि वो हंगामा सा है बरपा,
1: हाँ
2: तो वो आत्र भी सुना रहे थे
1: तो साथ ही सर को वो नहीं चला सकते, मेरी ड्यूटी में बैठ रहा हूं। क्या वो अल्कोहल का जिक्र है? अच्छा अच्छा अच्छा, और
3: तो वो जो फरहान का गाना चलता रहता है,
1: ये जो तो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है।
3: मैं तो मेरे आने से पहले तो वो क्यू में लगा,
1: और उस दिन वो भी चल रहा था अजीज मियां का मैं ना ना ना ना ना ना, वो भी चल रहा था यार। ये तो गलत बात है,
4: सुनाओ फिर यार गाना,
1: ये तो गलत बात।
3: बस वही बात है कि कोई सुन ले तो बस,
1: हां जेड़ा फड़या जाए ठीक है।
3: कॉल आ रही है,
1: वैसे सब में मैंने कहा था कि मैम को लेते हैं, चले बारह ना ना ना, वो भी चल रहा था यार। ये तो गलत बात है,
4: सुनाओ फिर यार गाना,
1: ये तो गलत बात।
3: बस वही बात है कि कोई सुन ले तो बस,
1: हां जेड़ा फड़या जाए।

0: हाँ वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना तो
1: नहीं, ये कोई बहुत कॉल
2: चेक कर रहा है, फिर कॉल लगती
0: है। आ रही आ रही आ रही है,
1: ये बहुत ही आवाज।
0: कौन सी
1: वाली?
0: अच्छा
2: घोड़ा
0: 0511111001 ये नंबर है।
1: 920 पंजी वो क्या बताते हो?
3: 920 2540
2: पंजाबी में बताएं।
3: 0512
0: 920 2540 9202540
1: वैसे अकाउंट्स में ना आप तीन डिजिट में एक वो बताते हैं, जैसे 903 25 के बाद क्या बताया था?
3: 40
1: तो 240 सिफर।
0: कॉल आ गई जी,
3: लेकिन टेलीफोन नंबर।
0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
3: तीन डिजिट्स।
0: वालेकुम
4: कॉलर,
0: ठीक हो?
4: देखो जफा बोल
0: रहा हूं। कॉलर
1: जफा लाहौर से।
0: जफा लाहौर से। जफा भाई कैसे हैं? करम अल्लाह का। जैफा भाई
2: कहाँ खड़े हैं
0: या किधर बैठे हैं?
1: जिशान
0: भाई कहाँ हैं? जिशान
5: भाई कहाँ पे हैं? जिशान
0: मैं इधर ही हूँ यार।
5: बताओ यार जिशान कहाँ पे हो?
0: जी जैफा भाई,
1: तबीयत
0: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह यार। सब्र कर रहे हैं दो मिनट साहब। बड़ी मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी यार। बड़ी मेहरबानी यार, थैंक यू जैफा, दुआ में याद रखो मेरे भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखो यार। यूसुफ भाई ये गलत बात है यार, अभी तो माहौल अब देखे आते भी आपके कहने पे मैंने और अब थोड़ा रिदम बन रहा था कि नहीं बन रहा था यार, ये तो गलत बात है ना। अभी हम जा रहे हैं कहीं कॉफी पियेंगे अच्छी सी यार। हाँ वाकई 2:15 हुए, अभी गलत हुआ है, बाकी मेरी घड़ी में भी 2:15 हुए। हाँ हाँ ये देखिए इधर भी 2:15 हुए, आपका गलत है यार। क्या करना है आदर भाई? क्या करना है? बैठना है?
2: चलो जैसे कहते हो
0: आप बताएं।
2: जैसे कहते
0: हो आप बताएं।
1: मैं तो आपके साथ जैसे आप
0: बताएं। आप बताएं खुरम भाई
1: जैसे आप कहें।
0: चले मेरा ख्याल से चलते हैं फिर, कहीं बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, क्या कहते हैं?
1: थोड़ी
0: और कहीं होगा भी बैठ सकेंगे कहीं, अदरवाइज नहीं है तो फिर तो यहाँ पे ठीक है, मगर बैठ
1: सकते हैं।
2: कुछ भी नहीं है भाई सिवाय वो चाय के।
5: नहीं नहीं बड़ा कुछ मिलता है?
2: कुछ नहीं भाई बड़े इस टाइम
0: पर। वो जब कह रहे हैं कि मिलता है तो फिर
5: मैं आपको जगाऊंगा
2: यार, मुझे पता है आप कैसी हो।
0: कुछ तो मिल ही जाएगा ना, कुछ थोड़ा पराठा फूटा तो मिल ही जाएगा।
5: हां वो तो
0: चलो साइन आउट तो कर ले, वो उनका 15 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जी सर
1: जनाब मैं ऑन ही थी ऑन है। सबको ईद मुबारक जी, गुज़श्ता आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ट्यूसडे 10 से 12 में, और जाते जाते बस यही कहना है कि सुनो जिंदगी मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सुनो जिंदगी मुझे तुमसे बिछड़ना बुरा लगता है, बहुत बुरा, मगर फिर भी चलता हूँ, फी अमानल्लाह।
0: भाई वाह जी खुरम
5: जी जी हां भाई।
0: अच्छा मैं करूं वेल लिसनर्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ड्यूरिंग प्रोग्राम। कोई बात ऐसी जो आपकी समातों पर गिरा गुजरी हो तो माफ फरमा दीजिएगा। मेरा प्रोग्राम होता है एवरी थर्सडे रात 12 से 2, और अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
2: जी हाँ लिसनर्स मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद, मुझे सुना करते हैं इतवार की शब रात 12 से 2, और बहुत अच्छा लगा आज इस महफिल में, और जैसा कि जिशान ने कहा कोई बात समा खराशी का बायस बनी हो तो माज़रत चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इट्स मी आतिर अली सैयद साइनिंग आउट।
5: ओके जनाब मुझे कहते हैं जी आरजे केबी, और आरजे केबी के साथ आपका साथ हमेशा हर फ्राइडे को होता है, और आज का प्रोग्राम होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई बात आपके दिल पे भारी गुजरी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, रब के हुजूर भी माफ़ी खासगार हूँ, आपके हुजूर भी माफ़ी खासगार हूँ, इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, ख़ताओं का पुतला हूँ, ख़ताएँ सज़द हो जाती हैं, ख़ताएँ माफ़ कीजिएगा, अल्लाह के हवाले आपको छोड़े जाते हैं, और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले जुम्मे को, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।